0: हेलो
1: हे नायल, आर यू फ्री? कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं कह रहे थे ना?
0: नहीं नहीं, तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, बोलो।
1: असल में मुझे अपनी दोस्त के घर से नोट्स पिक करने हैं। कैन यू प्लीज टेक मी देयर?
0: हाँ, तुम बस रेडी हो जाओ, मैं आ रहा
1: हूँ। यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो।
0: सी यू।
2: देखो, चिंता तो होती है, घर वालों की होती है, बाहर वालों की होती है, बॉलीवुड वालों की होती है, हॉलीवुड वालों की होती है, टॉलीवुड वालों की होती है, और जितने भी इंडस्ट्री है जिनको हम थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं, चिंता तो होती है यार। सो आरजे नूपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, और जैसे ही चिंता का विषय सोशल मीडिया पे पहुंचता है तो सवाल ये उठता है कि भैया हालचाल कैसे हैं। हाँ, अगर हम संजय दत्त की बात करें तो इन्हें स्टेज 4 लंग कैंसर हुआ था, जो कि डिटेक्ट हुआ था अगस्त 2020 में। हाँ जी, कोविड वाले फेज में, और उसके बाद इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, हर चीज रिवर्स करके अपने आप को ठीक किया, क्योर किया, फैमिली को क्वालिटी टाइम दिया, एंड अब ये दोबारा से अपने चेकअप के लिए वहां पहुंचे हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि सब ठीक तो है ना, सब ठीक तो है ना। हाँ जी, तो फैंस जो है ना, वो चिंता बहुत करते हैं। हाँ, आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
0: यू नो वॉट, आप इस बात को नहीं समझेंगे कि दो टॉपर्स एक दूसरे को कितना ज़्यादा मतलब हेट करते हैं। हाँ, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि ठीक है, हम कौन से टॉप रैंकर्स हैं, जो होगा देखा जाएगा, तो हमारे मन में तो ईर्ष्या रहती नहीं है। लेकिन वो लोग जिनके मार्क्स अच्छे अच्छे अच्छे और अच्छे आते जा रहे हैं, वो लोग आपस में एक दूसरे से इतना प्रेम नहीं करते, और अगर कर भी रहे हैं तो वो झूठ है, सच्ची बता रही हूँ मैं। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। तो भाई वन ऑफ द वन क्या मतलब, दो ऐसे फिल्मी सितारे जो टॉप पर रहते हैं वो है अक्षय कुमार और अजय देवगन। इस बार इनका भी ऑलमोस्ट आमना सामना होने वाला है 2026 में। अजय देवगन की धमाल मूवी का फोर्थ पार्ट, दैट इज धमाल फोर जो है ना, वो 17 जुलाई को रिलीज होने वाली है। और अगर हम अक्षय कुमार की बात करें तो वो पीछे नहीं रह सकते, उनकी वन ऑफ द आइकॉनिक मूवी वेलकम, हाँ जी, इसका तीसरा पार्ट वेलकम टू द जंगल 26 जून को रिलीज होने वाला है। तो इन दोनों की टक्कर कही जा रही है कि दो बड़े फिल्मी सितारे क्या करके दिखाएंगे, मजा भी आएगा या नहीं। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, मजेदार गाने डेफिनेटली कराए हैं आपका इंतजार।

0: you to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: एक वर्ड है जो हमें 365 डेज बहुत ज्यादा पसंद है। कैन यू गेस वो कौन सा है? हाँ जी, दैट इज डिस्काउंट। बिल्कुल डिस्काउंट अगर मिल रहा है, वो भी फ्लैट 40% डिस्काउंट मिल रहा है, तो किसको पसंद नहीं है। देखो, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की आप इतनी सारी ज्वेलरीज पसंद तो कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप उन्हें अपने गले में लगा कर नहीं देखेंगे, हाथों में पहन कर नहीं देखेंगे, तब तक मजा कैसे आएगा? हाँ, एंड डेफिनेटली आपको उस लेवल की ज्वेलरी मिल सकती है फ्लैट 40% मेकिंग चार्जेस के साथ। कहाँ? जोया लुकास के ज्वेलरी शोरूम में। राइट, गोल्ड ज्वेलरी हो, डायमंड हो, प्रेशियस हो, अनकट हो, प्लैटिनम हो, मतलब हर तरह की ज्वेलरी के ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और वहां पे जिस तरह के डिस्काउंट्स चल रहे हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तो डेफिनेटली पहुंचिए जोया लुकास ज्वेलरी स्टोर, जो कि 320 सिरानगुन रोड एंड 134 सिरानगुन रोड में कर रहा है आपका इंतजार। मस्ती मॉर्निंग शो पर मैं आरजे नूपुर आपके साथ।

0: सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: 40% off, 40% joy alukas,
3: 40% off, oh my god, let's go
4: offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge.
5: Soon soon baba, soon soon baba, soon soon soon
4: Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन
2: जोश में रहो।
3: You know what? ऐसा एक रूल बना दिया गया है कि भाई अगर कोई मूवी रिलीज हुई है, अगर वो मूवी अच्छी गई है या बुरी गई है, तो भी 8 हफ्तों के बाद ही उस मूवी को ना OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा, ताकि एक डिसेंसी मेंटेन रहे, है ना, मतलब एक डिफरेंस रहे। लोग जानबूझ के थिएटर ना जाए, ऐसा ना हो, लोग देखें मूवी और उसके बाद इंतजार करें OTT प्लेटफॉर्म का। लेकिन इस बार थोड़ा अलग खेल खेला गया है। पहले ही बता दिया गया है कि देखना है थिएटर में आ जाओ, दोबारा से देखने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, हो जाएगा सारा काम। सो मैं आज पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ दृश्यम मूवी, जिसका आप कह सकते हैं मलयालम वर्जन भी रिलीज किया गया और हिंदी वर्जन भी रिलीज किया गया है, और इस बार जो इसका पार्ट आया है, मतलब सबसे पहला पार्ट आया था 2013 में, फिर 2021 में आया था, एंड इस बार जो इस मूवी का थर्ड पार्ट आया है वो काफी अलग तरह से क्राइम थ्रिलर रेंज जो है वो इसकी लाई गई है। और पहले डे ही, ओपनिंग डे ही, इस मूवी का रेवेन्यू 15 करोड़ क्रॉस कर गया था, तो उम्मीद करी जा रही है कि ये अच्छा बिजनेस कर लेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि मात्र 30-35 डेज के बाद इसे OTT प्लेटफॉर्म पर ला दिया जाएगा। तो ये एक थ्रेट भी है कि लोग थिएटर्स नहीं जाएंगे, OTT का इंतजार करेंगे। लेकिन जो बिल्कुल वो कहते हैं ना, दृश्यम मूवी की सीरीज से प्यार करते हैं, वो डेफिनेटली जरूर जाएंगे। आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: For show timings, check out the Radio Masti app now.

देखो, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना तो लोग उंगली नहीं उठाते, लेकिन जैसे ही कुछ ऊपर नीचे होता है तो लोग उंगली क्या पूरा का पूरा हाथ उठा देते हैं और कह देते हैं कि देखा हमने तो कहा ही था, आप हमारी बात मान नहीं रहे थे। सो हेलो हाय, मैं आरजे रूपर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। डोंट यू थिंक कि अगर ऐसी चीजें ना हो, उंगली उठाने वाली, हाथ उठाने वाली, तो हमारी लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। हाँ, बात तो ठीक है यार। सो हेलो हाय, मैं आरजे रूपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ बताना चाहूंगी, बात तो ठीक है लेकिन ये बात ठीक नहीं है। हर कोई कह रहा था कि देखो इस बार आलिया भट्ट को बुला लिया गया कांस में, लेकिन ऐश्वर्या राय को उसी ब्रांड के लिए नहीं बुलाया गया जिस ब्रांड ने आलिया को बुलाया था। हाँ, ये दोनों ही उस ब्रांड के हेयर शैम्पूज बहुत ज्यादा प्रमोट करती हैं। ये तो भेदभाव हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन रिसेंटली जिस तरह से ऐश्वर्या कांस पहुंची, उन्होंने बहुतों की बोलती बंद कर दी। लेकिन हाँ, इस बार भी उनकी ड्रेस जो थी ना, वो ऐसी वाव वाला फिगर नहीं था। एंड हर कोई कमेंट सेक्शन पे उंगली तो उठा रहा था कि यार ऐश्वर्या राय बच्चन इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि उनको तो बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया जा सकता है यार। पर ठीक है, इतने अपने अपने जो स्केल्स है ना, बढ़ाओ मत यार, अच्छी बात नहीं है। आरजे रूपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, तो उनको एनीवेयर मिर्जान, आती हूं मैं जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल।

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
2: रहो। देखो ऐसा कहा तो जा रहा है कि भाई लोग सेटिस्फाई होने बंद हो चुके हैं। अंजी लोगों को आप जितना ज्यादा सर्व करोगे, जितना ज्यादा पकवान दोगे, 56 पकवान भी दे दोगे ना, तो भी उन्हें 57th नंबर वाले पकवान में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। सो हेलो भाई, मैं आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अब देखिए 2026 में बहुत सारी प्रॉमिसिंग मूवीज है, रोल्स है, अपकमिंग एक्टर्स है जिनके नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन इसमें हर बार कहीं ना कहीं से रणबीर कपूर का नाम आ जाता है। क्यों? क्योंकि रामायण मूवी द मोस्ट अवेटेड मूवी जो है वो आने वाली है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, इस बार कहा जा रहा है कि सेफ का भी सेफेस्ट प्लान बनाया जा रहा है। देखो लोगों को इस मूवी के VFX समझ में नहीं आए तो VFX पे रीवर्किंग शुरू करी जा रही है। लोगों को सीता जी यानी साई पल्लवी का एक्सेंट समझ में नहीं आया, उनकी हिंदी लैंग्वेज पे क्वेश्चन पुट अप हो गए, तो भैया वो वॉइस भी डब करी जा रही है। तो इसका टीजर आ चुका, टीजर से भी लोग खुश नहीं है, तो उसका एक नया वर्जन सोचा जा रहा है। इसका पोस्टर भी पहले आ चुका है और पोस्टर भी लोगों को अच्छा नहीं लगा है, उसका भी नया वर्जन लाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर वो जब हम पेंसिल से कुछ लिखने बैठते हैं ना और कुछ गलत हो जाता है तो इरेजर से इरेज करते रहते हैं और बेस्ट होने तक हम लिखते रहते हैं। तो अभी वो वाला सीन चल रहा है सब जगह। हाँ जी, आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: आप भेदभाव का नया एग्जाम्पल, हाँ जी, सुनना चाहेंगे? भेदभाव से मतलब मेरा ये है कि सच में किसी के संग बड़ा बुरा हो रहा है और दूसरे के संग बड़ा अच्छा हो रहा है। सो हेलो, हाय, मैं आज रूपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एनीवेज, बॉलीवुड इंडस्ट्री बाहर से जितनी अच्छी लगती है ना, अंदर से उतनी खोखली निकलती है, राइट? और ये दीमक बहुत सालों पहले से लगी हुई है। रिसेंटली एक आध साइड के एक्टर्स ने एक बात कन्फेस करी कि जो लीड एक्टर्स सेट पे होते हैं ना, उनके लिए खाना एकदम अलग रेंज का आता है, और जो साइड के एक्टर्स और क्रू मेंबर्स होते हैं ना, उनके लिए खाने की क्वालिटी एकदम अलग आती है। भाई साहब, ऐसा भी कोई करता है क्या? हाँ, देखो, सिंगापुर में रहते रहते तो ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी नॉर्थ इंडियन कुजीन की कहां मिलती है? ऑफ कोर्स मिलती है शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट में, रैफल सिटी सेंटर, राइट? और अब तो यार 25 साल हो चुके हैं इन्हें, और 25 साल पर एक स्पेशल ऑप्शन भी है। अगर आपकी टेबल का बिल मिनिमम 100+ डॉलर होता है तो आपको ना 25th एनिवर्सरी का स्पेशल ऑफर मिलेगा, जिसमें कुछ डिशेस आपको मात्र 25+ डॉलर में मिल जाएंगी, लाइक मुर्गी टिक्का, तंदूरी चिकन, चिकन मक्खन वाला, शाही फिश, अमृतसरी करी, पालक पनीर, शाही सब्जी सिजलर, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको 25+ डॉलर पे मिल जाएगी। ये है इनका 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, और ये वैलिड है 30th जून तक। मिनिमम 100+ डॉलर पर टेबल होना चाहिए, ओके? डाइन इन के लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, रिजर्वेशन करवा लो www.shahimaharani.com पर। आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरटीएन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: 40% off, 40% joy alukas,
6: 40% off, oh my god, let's go
7: offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge.
8: Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry and 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.

0: सुन टकाटक। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
1: इतने सालों बाद आज भी कुछ वीडियोस को देखकर लगता है कि दिस हैपेंस ओनली इन इंडिया। हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एंड द पॉइंट इज कि बहुत सारे खतरों के जो खिलाड़ी हैं वो सिर्फ टेलीविजन शोज के रियलिटी में नहीं दिखाई जाते, वो सड़कों पर आपको नजर आते हैं। हाँ, और अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है, मैं बताना चाहूंगी, जिसमें ना गाड़ियां एक दूसरे को ऑलमोस्ट टच करके कट करके निकल के जा रही है। मतलब आप समझिए कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है और आपने हल्का सा कट मारा और आप आगे निकल गए, मतलब सेफली आप चल रहे हो लेकिन आप बहुत ही स्नेक की शेप में गाड़ी चला रहे हो। और उस वीडियो में लिखा हुआ है कि गैस करो कौन सी कंट्री का ये वीडियो है, गैस करो कहाँ ऐसी ड्राइविंग होती है, गैस करो इतना रिस्की बिहेवियर ड्राइवर्स कहाँ करते हैं। तो लोगों ने कमेंट सेक्शन में इंडिया इंडिया इंडिया इंडिया लिखकर हम सबकी तारीफ करी है या थोड़ी सी बुराई करी है, समझ नहीं आ रहा। बाय द वे, बुराई करी है यार, तारीफ कहाँ यार। तो डेफिनेटली एक कंट्री जहाँ सबसे ज्यादा प्यार जो है वो दिखाई देता है, या फिर वो कंट्री जहाँ सबसे ज्यादा ड्राइविंग रूल्स को लेकर मजाक नजर आता है, इन दोनों का नाम ही इंडिया है। डेफिनेटली, चलिए ऑन दिस नोट मी आरजे नुपुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। अब मुलाकात होगी बहुत जल्द, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
3: आई लव यू रसना,
2: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live. 75.
4: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस
5: का। अरे अरे, अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा?
6: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है,
7: Bollywood chart busters of the week, full on Renuka style.
6: Pumping up Friday evenings, 5 PM onwards. Catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musty Top 20, only on Radio Musty 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: charts to ruling the countdown. Yeah, Musti Top 20. Pumping up Friday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters. Musti Top 20. Only on Radio Musti 24/7 Live. The only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो एक केजी आटा,
2: हाँ जी जी,
1: आधा केजी मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
1: क्या जी?
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाजी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.

0: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
1: कैसा सा हो गया है ना कि जैसे ही थर्सडे आता है हमारा बॉडी क्लॉक ऑटोमेटिकली 90s मोड में स्विच हो जाता है, क्योंकि घड़ी में देखिए जरा 11 बज चुके हैं। इसका मतलब कि अब 90s का वक्त शुरू हो चुका है, 90s वाली अंतरा का आने का टाइम हो गया है, वो आ चुकी है और हम शुरू कर चुके हैं मस्ती 90s मिक्स टेप। यस यस, ये वही वक्त है जहां पे वक्त थम सा जाता है। इन 3 घंटे के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 90s में ऐसे गोते खा रहे होते हैं, ऐसे गोते खा रहे होते हैं कि हमें उससे बाहर निकलने का मन नहीं करता। वो शो जहां सिर्फ यादें नहीं याद करते, उन्हें दोबारा हम फील करते हैं। 90s को याद करते ही सबसे पहले जो है क्या याद आता है, अभी एकदम बात करते करते बोलूं तो एक जानी पहचानी सी खुशबू, एक पुराना गाना, वो टीवी का स्टैटिक साउंड या स्कूल कॉरिडोर का वो शोर। 90s जो है सिर्फ देखा नहीं जाता, उसको पूरा ऑब्जॉर्ब किया जाता है, और इसीलिए आई थिंक ये वाला शो जो है वो इतना पसंदीदा हो चुका है सबका। ब्राइट लंच बॉक्सेस, कॉमिक बुक के कवर्स, साइकिल पे हैंगिंग वाटर बॉटल्स, कैसेट के वो रैक्स, संडे के वो कार्टून्स, और हर चीज का एक 90s वाला टेक्सचर। आज सब कुछ इतना फास्ट है, तब इंतजार होता था मूवी जब टीवी पे आने का, एक वो जो वेट होता था कब आएगी, फेवरेट सॉन्ग रेडियो पे कब बजेगा, फोटो डेवलप होकर कब मिलेगी, सब में वेट कॉमन था। पर शायद इसी वेटिंग की वजह से एक्साइटमेंट भी कितनी ज्यादा होती थी ना। और बॉलीवुड, उफ, उनकी तो क्या ही बात करें। 90s सिनेमा रियलिस्टिक कम इमोशनल फुल पावर था। हीरो एंट्री में हवा, एकदम कंपलसरी, उसके कपड़े के साथ बाल भी उड़ रहे होते थे। रोमांटिक सॉन्ग्स में माउंटेन्स कंपलसरी, और सैड सीन्स में वायलिन का अटैक कंपलसरी। पर फिर भी हम दिल से कनेक्ट करते थे, क्योंकि उस जमाने में परफेक्शन नहीं पर्सनालिटी थी, और इसीलिए आज भी एक पुरानी सी वो धुन, एक कैंडी का वो रैपर या एक VCR का वो साउंड सीधा हमें उस दुनिया में लेकर जाता है जहां इवनिंग्स लॉन्गर लगती थी और हैप्पीनेस सिंपलर। तो बस तैयार है ना, चलते हैं 90s के उस यादों के गलियारे में, चलिए खो जाते हैं लेकिन गानों के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: अपनापन फील करने वाले दिन, 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s नेक्स्ट डे।
1: आई एम श्योर जो बात मैं अब जो याद इनफैक्ट अब मैं ताज़ा करने वाली हूँ, हम में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल एक्सपीरियंस भी की होगी और आपको अचानक से वो टिफिन का स्टील का वो टिफिन वाला डब्बा भी याद आ जाएगा। वाई? बिकॉज somehow it is related. Like इतना ऐसा लग रहा है कि मेरे तो आंखों के सामने मेरा स्टील का डब्बा एक्चुअली में आ गया जो मैं लेके जाती थी अपने स्कूल में। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अंतराब के साथ और यहाँ पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स डे। बाई 90s के स्कूल मॉर्निंग्स परफेक्टली ऑर्गेनाइज कभी भी नहीं होते थे, एक कंट्रोल्ड केओस टाइप का हुआ करता था और उस केओस का एक परमानेंट कैरेक्टर था स्टील टिफिन का मिसिंग रबर बैंड, लाइक प्रॉपर रबर वाले बैंड, अलग अलग पिंक और ग्रीन और येलो कलर्स में जो आते थे। वो देखिए या तो राउंड शेप का जो है स्टील का टिफिन होता था, या फिर यू नो रेक्टेंगल शेप का होता था, या फिर वो दो लेयर वाला भी आपने देखा होगा उस टाइम पे। अब ये रबर बैंड का काम ये होता था कि देखिए मतलब मम्मियाँ तो कोशिश पूरी करती थी ठीक है कि उसमें से तेल ना लीक हो या फिर खाना ना गिर के बाहर यू नो फैल जाए, किताबें ना खराब हो जाए, तो वो रबर बैंड से उसको बांधा करती थी। पर नेचुरली सुबह स्कूल के एग्जैक्ट रश टाइम पे हमेशा वो रबर बैंड मतलब भाई हंट शुरू हो जाती थी क्योंकि वो गायब हो जाता था कि रबर बैंड नहीं मिल रहा, रबर बैंड नहीं मिल रहा। फिर पूरा हाउस सर्च का ऑपरेशन चालू होता था, सोफे के नीचे देखो, किचन के शेल्फ पे देखो, स्कूल बैग के साइड पॉकेट में देखो, और जब नहीं मिलता तो इमरजेंसी जुगाड़ मोड। 90s वॉज ऑल अबाउट द जुगाड़। डब्बे को केयरफुली बैलेंस करके हम जो है अपने स्कूल बैग में डालते थे, पूरी जर्नी टेंशन भरी होती थी कि प्लीज प्लीज प्लीज लीक मत होना यार। 90s स्कूल मॉर्निंग्स ना स्मूथ नहीं होते थे, काफी जिंदा दिल होते थे। जैसे यू नो जल्दी जल्दी दूध फिनिश करो, जल्दी जल्दी शूज पहनो, होमवर्क चेक कर लो, वाटर बॉटल तुमने भरा कि नहीं भरा, और वाटर बॉटल में से हमेशा ही मेरे तो पानी ही ड्रिप करता रहता था, मतलब उसको टांग के अगर लेकर भी जाती थी तो मेरे शर्ट के साइड पे एकदम गीला गीला, मतलब कहाँ से वाटर बॉटल से। और इसके बीच में टिफिन का डिजास्टर, स्टील टिफिन का जो साउंड है वो भी काफी आइकॉनिक ने, जैसे मैं बात कर रही हूँ आपको वो कट वाली आवाज नहीं आ रही, और कभी कभी तो इतनी ज्यादा टाइटली वो बंद हो जाता था, मैं बता रही हूँ। क्योंकि क्या है उसमें भी हम लोग हमारे आई थिंक 90s का हर चीज़ का जुगाड़ था, ठोक पीट के हम तो कुछ ना कुछ काम करा ही लेते थे, हमें भी ठोका पीटा जाता था, हम वही चीज़ जो है अपने टिफिन पे भी खुल नहीं रहा है, ठाक ठाक ठाक ठाक उसको दीवार पे मारा है, जमीन पे मारा, और तब जाके वो खुल भी जाता था। वी जस्ट काइंड ऑफ फिगर्ड आउट एवरीथिंग ऑन आवर ओन। आपको नहीं लगता है ऐसा? मुझे लगता है हमें एक 90s वाला म्यूजिकल ब्रेक ले लेना चाहिए। नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्टे ट्यून्ड।

पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। चलिए चलिए, बीच बीच में थोड़ा हमारे बॉलीवुड की तरफ भी जाते रहना बिल्कुल बनता है। वेलकम बैक टू मस्ती 90s मिक्सटेप। मैं हूं अंशु आपके साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। भाई 90s के बॉलीवुड में अगर कोई चीज साइंटिफिकली इम्पॉसिबल लेवल पे इम्पोर्टेंट होती थी तो वो थी हीरो की एंट्री। और हीरो एंट्री सिंपल कभी भी नहीं होती थी 90s में। जो दरवाजा है वो हल्के से एकदम स्लोली स्लोली ओपन होगा, बैकग्राउंड में ड्रामेटिक म्यूजिक होगा, धूल उड़ रही होगी, हवा चल रही होगी, कैमरा शूज से फेस तक ट्रैवल करेगा और हीरो अल्ट्रा स्लो मोशन में वॉक करेगा, जैसे ग्रेविटी भी उसकी फैन हो गई हो। एंड द फनीएस्ट थिंग, वो 15 सेकेंड की एंट्री का सीन 90s में शूट करने में कभी कभी पूरा का पूरा दिन लग जाया करता था। दैट इज राइट, आई एम नॉट किडिंग। क्योंकि 90s में VFX लिमिटेड क्या बहुत ही ज्यादा, मतलब हाथ बंधे हुए थे, कुछ इतना हर किसी के पास नहीं सहूलियत हुआ करती थी उस टाइम पे, तो डायरेक्टर्स को प्रैक्टिकली सब क्रिएट करना पड़ता था। डस्ट जो है वो मैनुअली उड़ानी पड़ती थी, इंडस्ट्रियल फैंस चलानी पड़ती थी फॉर दैट हवा वाला इफेक्ट, लाइट्स को एडजस्ट करना पड़ता था और हीरो की टाइमिंग को परफेक्टली सिंक करना पड़ता था इन सभी चीजों के साथ। कभी शर्ट कम फ्लटर हो रही है तो रीटेक हो गया, कभी सनग्लासेस पे गलत रिफ्लेक्शन आ रहा है तो फिर रीटेक हो गया, कभी डस्ट कैमरा पे ज्यादा आ गया तो फिर रीटेक हो गया। एंड मीनवाइल हीरो को सेम वही कॉन्फिडेंट वॉक 20 बार रिपीट करना पड़ता था। ओह माय गॉड, स्पेशली जैसे सनी देओल हो गए, हमारे सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, उनकी एंट्रीज लिटरली इवेंट के बराबर होती थी, राइट? सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में तो ऑडियंस एंट्री पे ही सीटियां बजा के कि अरे हीरो आ गया हमारा। मतलब स्टोरी तो बाद में, पहले हीरो का ऑरा और लाइटिंग भी कितनी ड्रामेटिक होती थी, नहीं? बैकलाइट से ग्लो आएगा, स्लो स्मोक आएगा, गोल्डन फिल्टर्स होंगे, जैसे नॉर्मल आदमी नहीं कोई लेजेंड आ रहा हो। आजकल ना क्विक कट्स और CGI एंट्रीज दिखाई जाती है, द प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग वाज काइंड ऑफ अ स्वैग, लाइक द डस्ट एंड द फैंस एंड द स्लो मोशन। एंड ऑनेस्टली 90s बॉलीवुड को पता था हीरो सिर्फ कैरेक्टर नहीं होता, फुल ऑन इमोशन होता है। सो इसीलिए आज भी कभी ओल्ड स्कूल स्लो मोशन वॉक अगर देखती हूँ ना तो अंदर से ऑटोमेटिकली फील सी आ जाती है कि लगता है एंट्री होने वाली है। टिल डेट अगर एंट्री का म्यूजिक मेरे को बोलो ना बोलने के लिए तो ऐसे नहीं है, टनान बताओ, साउंड इफेक्ट भी हमारा वहीं पर अटका हुआ है, क्या ही बताऊँ मैं। गाना सुनते हैं 90s वाले ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
2: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657.
3: 40% off, 40% joy Alukas.
4: 40% off? Oh my god! Let's go, let's go!
5: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.

Oh my god, रेडियो बस्ती 24/7 लाइव अंतर आपके साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। भाई 90s में पब्लिक कॉइन बॉक्स के फोन्स याद आया ये सिर्फ मशीन्स नहीं थे मेरे दोस्त, मिनी इमोशनल रोलर कोस्टर्स हुआ करते थे। स्पेशली कभी भी अगर वहां पे बूथ पे जाके कॉल करना हो किसी को अर्जेंट और कॉइन अंदर जाके ऑफिशियली फंस जाए येलो या रेड कलर के वो पब्लिक फोन बूथ्स, वही याद दिलाना चाहती हूँ। STD ISD बूथ्स, ISD का तो हमें बहुत लंबे टाइम तक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, ठीक है। फिर बाद में पता चला कि भाई फॉरेन में अगर फोन करना हो तो उसको यूज किया जाता था, हमारे लिए वो बेकार ही था क्योंकि इतना ज्यादा हम कहाँ किसी बूथ में जाके किसको करेंगे, फॉरेन में हमारा कोई था ही नहीं। उसका वो समय था, कट टू आज हम खुद ही फॉरेन में हैं। टाइम्स आई टेल यू, कभी नहीं पता चलता कि आप कब इवेंचुअली कहाँ पे लैंड अप करोगे। बट एनीवेज, गोइंग बैक टू द एसटीडी बूथ, सो कॉइन डालो, फिर नंबर डायल करो और फिर प्रे करो यस कि मशीन आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करे। पर नेचुरली कभी कभी मशीन का मूड भी अलग हो जाया करता था, कॉइन अंदर गया पर कॉल कनेक्ट नहीं हुआ, बस फिर स्टार्ट होता था क्लासिक 90s का टेक्निकल सॉल्यूशन, फोन को हल्का थप्पड़ मारो, मैंने कहा ना ठोक पीट के हर चीज हमें निकालनी पड़ती थी जो है 90s में। कभी साइड से शेक करो, कभी कॉइन स्लॉट पे वो जो फिंगर घुसा घुसा के या फिर उसको टैप करो, जैसे मशीन इमोशनल ब्लैकमेल से ही ऐसे ही करते हुए ठीक हो जाएगा कि बस इतना मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है, दे रहा हूँ कॉइन वापस दे रहा हूँ। सो 90s टेक्नोलॉजी स्मूथ डेफिनेटली इतनी ज्यादा नहीं थी, बिकॉज आ ही रही थी धीरे धीरे, टेम्परामेंटल थी। वाह वाह वाह वाह, टीवी एंटीना एटीट्यूड दिखाता था, कैसेट रिबन उलझ जाती थी और कॉइन बॉक्स के फोन्स कॉइन्स खा जाते थे। एंड द फनीएस्ट थिंग इज सबको लगता था कि थोड़ा सा और जोर से इसको मारो तो हो ही जाएगा, बाहर आ ही जाएगा। कभी फोन बूथ वाले अंकल भी आकर ऐसे ही सेम ही चीज, उनको लगता था उनका थप्पड़ इज जोरदार देन वॉट एवर थप्पड़ वी वर डूइंग विद दैट कॉइन बॉक्स फोन के उसके लिए। बट इट यूज टू वर्क क्योंकि टंग से नीचे जो है कॉइन भी आ जाया करता था, यानी एक इंस्टेंट विक्ट्री वाली फीलिंग आती थी कि पता नहीं हमने क्या ही कर लिया है। मतलब 90s में ना ही सिर्फ हर चीज ब्राइट एंड ड्रामेटिक थी, हमारे थॉट्स और हम उसको किस तरह से फील करते थे वो भी कितना ड्रामेटिक हुआ करता था ना। हमें लगता था कि हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, कि वी जस्ट डिड समथिंग रियली रियली बिग। एंड आई समटाइम्स आजकल के डेट में आई अप्रिशिएट दैट वी कुड थिंक लाइक दैट 90s में, और इसी वजह से आज भी कभी कभी बहुत छोटी सी बात में हम अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश हो जाते कि यार मैंने ये फिगर आउट कर लिया, यार मज़े ही आ गए, छोटी बात बड़ी खुशी। बट दैट इज द सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर चलिए फिलहाल एक और बात हमें बहुत खुशी देती है जब बीच बीच में ये 90s वाले गाने आते रहते हैं, चलते हैं सुन के वापस आते हैं ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रसना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards, only on Radio Musty 24/7 Live.

0: रील से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हाथ पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना।
1: अरे स्कोर कितना हुआ?
2: अरे भूल गए यार। अरे उधर उस दीवार पे लिख के दे।
1: याद आया?
2: नहीं। चलो यही तो मेरा काम है, याद दिलाना ही तो आती हूँ मैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं हूँ 90s वाली अंतरा आपके साथ। यहाँ पर 90s के गली क्रिकेट के तरफ चलते हैं ना। गली क्रिकेट में अब देखो उसमें क्या ही तो टेक्नोलॉजी, हम वो कपड़े धोने वाले बट्टे से हम अगर खेल रहे हैं तो फिर हमारी टेक्नोलॉजी तो आप समझ ही रहे हो कितनी ग्रेट थी 90s में। बट मैनेजमेंट के स्किल्स आई थिंक लेवल नेक्स्ट थे उस टाइम पे भी हमारे। देखिए स्कोर बोर्ड अगर हमारे पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दीवार है ना। बस चौक उठाओ, कभी कभी चौक भी नहीं, हम लोग ना उस साइड में कभी कोई कोयला मिल जाता था तो उसको रख लेते थे। स्कूल से चौक लेकर आते थे, कलर वाली चौक लेकर आते थे। कभी कभी ऐसे ही पत्थर उठा के अगर उसमें से थोड़ा सा भी कलर निकल रहा हो तो उसको लेकर जो है हम लोग स्कोर बोर्ड एक दीवार पे बना दिया करते थे कि 27/3 थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है। नेचुरली हर ओवर के बाद किसी ना किसी की ड्यूटी होती थी कि उस स्कोर को अपडेट करना पड़ेगा। सो 90s का क्रिकेट यानी कि गली क्रिकेट उस टाइम पे बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं था, सेल्फ ऑर्गेनाइज था। कोई अंपायर नहीं है, कोई स्कोरर नहीं है, ऐप तो डेफिनेटली नहीं है, सब कुछ प्लेयर्स ही मैनेज कर रहे होते थे। मल्टीटास्किंग जो है वो 90s वालों में बड़ी कूट कूट के इसीलिए भरी हुई है। चौक स्कोरबोर्ड्स का फुल ड्रामा हुआ करता था, कभी बॉल लग के स्कोर इरेज हो गया, कभी बारिश हो गई तो वो आधा रह गया और आधा जो है वो बह गया साथ साथ में। फिर उसके बाद बहस, ओके अरे लास्ट स्कोर 42 था, नहीं 39 था, बाप रे बाप, चिल्लम चिल्ली, ये वो। एंड नेचुरली सब अपने फेवर में उसको याद रखा करते थे। वी ऑल नो व्हाट वी डिड, इसमें तो कोई क्या ही बताए, पर somehow गेम जो है वो चलता रहता था। और सिर्फ वॉल्स पे स्कोर्स नहीं होते थे, प्लेयर्स के कभी कभी नाम, हमने जो टीम के इनिशियल्स, कभी सचिन 11, पता नहीं क्या क्या कुछ तो लिखा करते थे। पूरी कॉलोनी क्रिकेट कल्चर दीवारों पे यू नो एकदम एक विजिबल हुआ करता था। एंड द बेस्ट पार्ट, फाइनल ओवर का टेंशन, वॉल पे टारगेट लिखा हुआ है 8 रन चाहिए 6 बॉल से। सडनली पूरा मैच ना वर्ल्ड कप की फील देने लग जाता था। आजकल ये जो डिजिटल स्कोर बोर्ड्स हैं, लाइव स्टैट्स हैं, तब चौक और मेमोरी पे हमें पूरा ट्रस्ट था। एंड उस सिंप्लिसिटी में ही कितना मजा आता था, एक चौका पीस, एक टेनिस का बॉल और पूरी इवनिंग सॉर्टेड। भाई 90s का क्रिकेट इतना इमोशनल लगता है कि उसमें फैसिलिटीज शायद कम थी, इमेजिनेशन और पैशन पूरा भरपूर मिला करता था। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं तो ऐसा लग रहा है मैं सच्ची में वापस उस गली में पहुंच गई क्रिकेट खेलने, बट ठीक है ऐसा ही होता है मेरे साथ एंड आपके साथ भी। ऑन मस्ती 90s मिक्स टेप, स्टे ट्यून्ड।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।
2: 40% off, 40% joy Lucas.
3: 40% off? Oh my god, let's go, let's go.
4: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Soon, soon, baba, soon, soon, baba, soon, soon, soon. Joya Lucas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joya Lucas, the world's favorite jeweler.

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s nostalgia का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: भाई 90s का रिमोट कंट्रोल साइंटिफिकली काम किया करता था या इमोशनली, ये तो मुझे आज तक ही नहीं क्लियर हो पाया है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर वेलकम बैक, आप सुन रहे मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं हूं अंशु आपके साथ यहां पर, क्योंकि उस वक्त में एक ही यूनिवर्सल बिलीफ था कि भाई एक तो जो आज का ऐसा लग रहा थीम ही है ठोक पीट के कर दो, तो एक तो वो था कि ठक ठक ठक करके एकदम जो है रिमोट को थोड़ा सा मारा इधर उधर तो रिमोट चलने लगा। बट देयर वाज अनदर थिंग कि रिमोट को थोड़ा सा उठाओ, थोड़ा एंगल में, कभी ऐसे एंगल में, कभी ऐसे एंगल में, कभी वैसे एंगल में, समहाउ हमारे इमेजिनेशन में ऐसा लगता था कि रिमोट की रे जो है ना वो एकदम सीधी पहुंच नहीं रही है, तो शायद हम अगर टेढ़ी करके दूसरी जगह से एंगल मारने की कोशिश करें तो शायद जो है टीवी इसका जो है कैच कर ले। नाउ टीवी सामने ही है, डिस्टेंस भी सिर्फ शायद 6 फीट का होगा, पर फिर भी रिमोट को कभी आसमान की तरफ एंगल करके बटन प्रेस कर रहे, कभी एक आंख बंद करके उसको एम कर रहे, कभी यू नो ऑफ कोर्स थप्पड़ वाज ऑफ कोर्स दैट यूनिवर्सल उसका पूरा का सोल्यूशन। नाउ जैसे सैटेलाइट पर्सनली कन्विंस हमें करना पड़ रहा हो कि वह चला दो।

यार क्या कर रहे हो 90s टेक्नोलॉजी लॉजिक से कम ना और भरोसे से ज्यादा चलती थी। टीवी नहीं चल रहा है, साइट पे टैप करो, कैसेट अटक गया है फूंक मार दो, रिमोट वीक हो गया है तो ऊपर से एंगल वेंगल चेंज कर दो। एंड कभी कभी सच में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई थिंक ऑल ऑफ दिस वर्कड आउट क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा था इन सब चीजों को लेकर। एंड पुराने वाले रिमोट्स भी जो है 90s के टाइम पे कितने सॉलिड हुआ करते थे यार, हैवी बॉडी होती थी, बड़े बड़े कलरफुल बटन्स हुआ करते थे, द बैक कवर यूजुअली वेंट मिसिंग, दैट इज वाई वो मम्मियाँ ना उसको रैप ऐसे रैप करके रखती थी 100 प्लास्टिक के कवर्स में कि पता नहीं क्या ही हो उसमें। नेचुरली घर में एक कोई ना कोई तो रिमोट एक्सपर्ट भी हुआ करता था कि अरे मुझे तो तुम लोगों को कुछ नहीं पता, मैं करता हूँ मैं। फिर वो ड्रामेटिक एंगल बना के चैनल इंस्टेंटली चेंज हो जाता था, जैसे मैजिशियन हो। माई डैड ही काइंड ऑफ जैसे ही वॉज एन इंजीनियर, सो ही काइंड ऑफ फिगर्ड आउट एवरी थिंग एंड ही हमें हमारे लिए तो वो सुपरमैन थे कि जब हम सभी से नहीं हुआ इट इज ओनली यू नो बापी हु कैन डू इट ओवर देयर, वो तो कर ही दिखाएंगे। आजकल कितना सब कुछ जो है AI और इन सब से स्मार्ट हो गया, राइट, वॉइस कमांड्स है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तब रिमोट का प्रॉपर बॉडी पोस्चर होता था एंड टीवी वॉचिंग भी एक फैमिली एक्टिविटी हुआ करती थी कि कोई न्यूज़ देखना चाहता है, कोई क्रिकेट देखना चाहता है, कोई कार्टून देखना चाहता है, कोई सीरियल देखना चाहता है। सो रिमोट ऑफिशियली पावर सिंबल था, इसलिए आई थिंक 90s गैजेट्स इतने लवेबल लगते हैं क्योंकि उनके साथ थोड़ा स्ट्रगल भी अटैच था। क्या क्या कुछ, ओ माय गॉड, मैं और मेरा भाई इतना लड़ते थे ना रिमोट को लेकर, इतना लड़ते थे मैं बता नहीं सकती। हम पिटे भी बहुत हैं इस लड़ाई की वजह से, जस्ट लेटिंग यू नो। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्स टेप।

0: to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
6: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
5: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
6: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली on Radio Masti 24/7 Live.
5: For show timings, check out the Radio Masti 24/7 Live app. RJ Mugdha ke saath, gossip bhi, masti bhi, sarcasm bhi, sab kuch sirf masti hangout.
7: Pencil se kasit ki real suljhana, crush ka naam haar pe likhkar hai sharmana, aisa tha 90s ka zamana. Ye hai masti 90s mixtape jaane jana.
8: इतना धुआं क्यों है भाई? कहां, क्यों, कब, कैसे? 90s का सिनेमा है बॉस, धुआं तो होगा ही होगा। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर अंतराप के साथ मस्ती 90s मिक्सटेप आप सुन रहे हो और मैं हूं ऑफ कोर्स। मेरे इंट्रोडक्शन क्या ही लोगे, आप तो मेरी बात सुनो ठीक है। 90s के बॉलीवुड के सॉन्ग्स में एक बहुत ही लाइक परमानेंटली वो चीज हवा में रहती थी, दैट वाज फॉग, है ना। डिस्को सॉन्ग हो, रोमांटिक डांस हो, विलन का पार्टी सीन हो, सेट पे हल्का हल्का स्मोक तो कंपलसरी रहता था। कभी स्टेयर्स के पास फॉग आ रहा है, कभी डांस फ्लोर पे फॉग आ रहा है, कभी हीरो की एंट्री पे पीछे फुल क्लाउड इफेक्ट आ रहा है। और हम एक्चुअली में पहले जब जो लोग देखा करते थे ये सारे सीन्स, ऐसा मतलब क्वेश्चन आता था क्यूरियोसिटी के मारे कि ये इतना स्मोक आ कहां से रहा है। रियलिटी दोज वर द फॉग मशीन्स। वी हैड नो, एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट क्या फॉग मशीन्स क्या होती है, क्यों यूज होती है। वी वर जस्ट अमेज्ड विद वॉट एवर वी वर बीइंग शोन ऑन दैट टेलीविजन। ऐसा मैजिक बॉक्स इसीलिए कहते थे क्योंकि हमें हर चीज ही मैजिक के जैसे लगती थी कि ये कैसे कर दिया यार। वो फील अभी आपको नहीं लगता, आजकल के दिनों में बहुत ज्यादा कम है, बिकॉज वी नो दैट AI एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन डू सो मच। बट उस टाइम पे एवरीथिंग लाइक हम हर चीज में हमारा मुंह खुचा था, वाह तुझे वो देखा था, वाह। सो 90s में फिल्म मेकर स्मोक अफेक्ट्स बहुत ज्यादा यूज करते थे क्योंकि उससे लाइटिंग कैमरा पे सॉफ्ट और काफी सिनेमैटिक लगती थी। और एक स्मार्ट रीजन भी था इसका, फॉग थोड़ा सेट का बैकग्राउंड हाइड कर देता था। मतलब अगर सेट स्मॉल छोटा है या डिटेलिंग जो है वो काफी लिमिटेड है, थोड़ा सा स्मोक चला दो, suddenly everything used to become dreamy kind of a thing, right? Disco songs में तो next ही level जाता था कि mirror balls है, neon lights है, silver costumes है और बीच में floating fog, पूरा atmosphere लगता था जैसे dance floor नहीं music video का planet हो गया हो। Especially songs which featured Govinda, Karishma Kapoor, Chunky Pandey, Mithun Chakravarti, सबके around वो soft सा एक smoky glow हुआ करता था। And romantic songs में fog plus blue lighting plus slow motion, officially ये था 90s romance का starter back. आज क्लीन HD के विजुअल्स है, तब सिनेमैटिक इम्परफेक्शंस थी, राइट? एंड ऑनेस्टली उसी सॉफ्टनेस की वजह से 90s सॉन्ग्स ना इतना ज्यादा ड्रीमी लगते थे कि एजेस ब्लर हो गई, लाइट्स ग्लो कर रही हैं, एक्टर्स ऑलमोस्ट मैजिकल फील हो रहे हैं। एंड आज भी बॉलीवुड सॉन्ग्स आप कोई भी उठा के देख लीजिए, है ना, एक अलग सी वॉर्म्थ फील होती है क्योंकि वो सिर्फ गाने नहीं, एक पूरा का पूरा एटमोसफेयर था। एटमॉस्फेयर तो हम भी यहाँ पे माहौल तैयार करेंगे क्योंकि 90s के गाने जो प्ले हो रहे हैं, है ना, तो सुने, चलिए सुनते साथ में।

0: स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 kg आटा,
2: हाँ जी जी,
1: 1/2 kg मसूर दाल,
2: जी जी,
1: काजू, किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
2: जी जी।
1: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
2: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
1: क्या जी?
2: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो, और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
1: वाजी, क्या बात जी।
2: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: प्रेम, निशा,
1: राहुल,
0: अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
2: दिस वन आई मीन बहुत पहले आई थिंक बात की थी, बट वी ऑल नो वी हैव डन दिस, बीन देयर डन दिस, एंड दिस इज सो वेरी 90s. आई विल टेक दैट नेम एंड यू विल बी लाइक ऑफ कोर्स वी नो अबाउट इट. भाई वो मीठी वाली फैंटम की, जी हाँ, सिगरेट्स. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूँ अल्ट्रा के साथ. यहाँ पे चल रहा है मस्ती 90s मिक्स टेप. हाउ कैन आई नॉट, ओके, व्हेन आई एम सो फुल ऑफ 90s की यादें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इधर उधर की सब जगह की बातें कर रही हूँ, और सम हाउ दिस वॉज सच एन असेंशियल पार्ट ऑफ आर 90s के मेमरी. ओके, दो स्मोकिंग इज डेफिनेटली, आई एम टोटली अगेंस्ट इट, इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मीठी मीठी जो, मतलब बहुत ही कमाल की चीज उन्होंने निकाली हुई थी, बिकॉज हार्मलेसली ही सही, बट वी ऑल कॉपीड इट, राइट, कूल फील करने के लिए हर बच्चे ने ये ट्राई कर रखा है. भाई एक्सपेंसिव गैजेट्स या इंस्टाग्राम फिल्टर्स नहीं चाहिए होते थे 90s के बच्चों को, बस एक पैकेट चाहिए था फैंटम स्वीट सिगरेट्स का. वो जो है वाइट कैंडी स्टिक्स, रेड टिप वाली, जिसका रंग निकलता था और वो हाथों पे भी आ जाता था. इफ यू डोंट रिमेंबर, आई रिमेंबर, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो. ऑफिशियली कैंडी एंड अनऑफिशियली फुल बॉलीवुड हीरो की ट्रेनिंग किट. एक स्टिक जो है वो एकदम एकदम जैसे जैसे हमने देखा हुआ है, एकदम सडनली एटीट्यूड हाथ में आते ही एटीट्यूड चेंज हो जाता था कि हम भी स्लो मोशन में वॉक कर रहे हैं, आंखें जो है हमने छोटी छोटी कर ली है, जैसे संजय दत्त या जैकी श्रॉफ का मोड जो है, वी कुड फील इट, नहीं अंदर से एकदम ऐसा आता था. एंड 90s के बच्चे जो है सिनेमा को सीरियसली काफ़ी अब्जॉर्ब करते थे, एज यू कैन सी वेरी क्लियरली. तो भाई अगर एक्टर या एक्ट्रेस ने सनग्लासेस पहने हैं तो हम भी पहनेंगे, कॉलर का फ्लिप करना, फैंटम की सिगरेट्स, एंड और जहाँ पे यू नो एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मोकिंग एंड ऑल हमें नहीं पता था, तो समझ में भी नहीं आता था, बस हमें लगता था स्क्रीन पे कूल लगता है तो ऐसे, एंड लड़के बहुत ज़्यादा करते थे ये, मतलब हम लोग तो बीइंग गर्ल्स हम लोग छुप छुप के क्या करती थी ये सारी चीज़ें, बट लड़के अपने अपने टशन दिखाने के लिए करते, कभी साइकिल पे, कभी क्रिकेट के ब्रेक में करते थे. नाउ बड़ा ग्रोन अप सा फील होता था कि हम अब बड़े हो गए हैं, हम की सिगरेट जो है वो करते हैं. एंड नेचुरली फ्रेंड्स के साथ जो है ड्रामेटिक डायलॉग्स वगैरह भी आने लगते हैं, समझे क्या है? पर दो सेकंड के बाद कैंडी भी उसको खा लेते थे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल वर किड्स, राइट. सो असली पर्पस स्वीटनेस ही था, एंड पैकेजिंग भी कितनी आइकॉनिक कर रखी थी उन्होंने, स्लिम सा बॉक्स, बोल्ड से लेटर्स, पॉकेट में रखते ही कॉन्फिडेंस डबल. एंड आज अभी इस वक्त सोचते हुए बात कर रही हूँ तो कितना इनोसेंट था ना ये सारी चीज़ें, कोई सोशल मीडिया का पोजिंग नहीं, कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं, एक इमेजिनेशन, बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस, एंड वी आर सो डन एंड सेट मैन. वो दिन भी क्या दिन थे, ये वाला नहीं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ 90s के गाने चलेंगे.
3: दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है. No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards, only on Radio Mercy 24/7 Live. 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5.

पेंसिल से कसरत की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप जाने जाना। Welcome back to Musti 90s Mixtape. मैं हूँ अंतरा आपके साथ on Radio Musti 24/7 live. भाई, entertainment एक ही legend पे 90s के वक्त में depend किया जाता था इसके ऊपर. 90s में वही एक भैया थे जिनके पास पूरे मोहल्ले का happiness का remote control हुआ करता था. बताओ बताओ कौन है, कौन है? नहीं, केबल ऑपरेटर वाले भैया. आज वाईफाई ना स्लो हो तो हम लोग रीस्टार्ट कर लेते हैं, तब अगर केबल चला गया तो सीधा केबल वाले भैया को फोन मिलाया जाता था कि भैया कार्टून नेटवर्क नहीं आ रहा है. और केबल ऑपरेटर का स्टेटस जेन्युइनली काफी हीरोइक होता था, राइट? स्पेशली जब नया चैनल लॉन्च हो, पूरा एरिया एक्साइटमेंट मोड में था कि भाई स्टार मूवीज आ गया क्या. डू यू रिमेम्बर दिस चैनल कॉल्ड स्टार मूवीज? MTV चालू हो गया क्या? और अगर संडे मूवी के बीच में सिग्नल चला गया तो बस इतनी फ्रस्ट्रेशन, और फिर तो मतलब एंडलेस कॉल्स. ठीक है भैया, पिक्चर जो है ना अच्छी नहीं आ रही है, इसका वो बड़ा घिच आ रहा है. 90s में एंटरटेनमेंट ऑटोमेटिक नहीं था, लोकल नेटवर्क पे डिपेंड करता था. केबल वायर्स टेरिस पे लगाए जाते थे, जंक्शन बॉक्सेस पोल्स पे लगाए जाते थे, केबल भैया स्कूटर पे फुल इंपॉर्टेंस के साथ, और कई बार तो साइकिल में. ऑफ कोर्स कभी कभी चैनल्स ना रैंडमली डिसअपीयर भी हो जाते थे कि आज अगर स्पोर्ट्स है तो कल सडनली रीजनल म्यूजिक हो गया. फिर स्पेक्यूलेशन शुरू हो जाता था कि शायद कोई केबल का इशू है. हर बात का सोल्यूशन हमारे पास एक ही लाइन में आ जाता था. जब केबल वाले भैया आके वायर्स फिक्स करते थे तो ऐसा रेस्पेक्ट आता था उनके लिए दिल से कि मैं क्या ही बताऊं, कि जैसे इंजीनियर प्लस मैजिशियन का कॉम्बो हमने देख लिया हो. स्पेशली बच्चों के लिए तो केबल ऑपरेटर वॉज नथिंग लेस देन अ सुपर हीरो, राइट? क्योंकि कार्टून नेटवर्क या WWF, क्रिकेट के मैचेस, मूवीज सब उनके थ्रू आ रहा है. आजकल इतने सारे यू नो वी हैव चॉइसेस, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स अनलिमिटेड है, तब एक एक्स्ट्रा चैनल मिल जाना भी ना एकदम फेस्टिवल के बराबर लगता था. एंड ऑनेस्टली 90s का टीवी वॉचिंग इतना एक्साइटिंग इसीलिए था क्योंकि उसमें अनप्रडिक्टेबिलिटी काफी थी. नहीं, सिग्नल कभी परफेक्ट नहीं होगा, कभी स्नोई है, पर एक्साइटमेंट ऑलवेज फुल. एंड शायद इसीलिए आज भी वो पुरानी केबल की तारों को देखते ही अंदर से वो सेम सी फीलिंग आती है कि भाई भैया थोड़ा सा सिग्नल अगर ठीक कर देते तो मजा ही आ जाता. नहीं, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, यहाँ पे सिग्नल बिल्कुल क्लियर है कि चलेंगे 90s वाले म्यूजिकल ब्रेक की ओर ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवघर, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप।
3: वेल, टॉकिंग अबाउट केबल वाले भैया, तो वहीं पे मैं और इर्द गिर्द ही 90s में घूम रही हूँ। होता है ना कि आप पास वाली गली में जाओ तो लगता है कि चलो इस गली में भी जाकर देख ही लेते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं मस्ती 90s मिक्स टेप। मैं हूँ 90s वाली अंतरा आपके साथ यहाँ पर। एंड 90s में इवन वॉचिंग टीवी, इट नीडेड अ स्किल सेट, राइट? 90s में मूवी देखना सिर्फ प्ले बटन दबाना नहीं होता था मेरे दोस्त, टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी तो कोई चीज हुआ करती थी। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बड़ा टेस्ट हुआ करता था VCR का ट्रैकिंग बटन। मूवी स्टार्ट हुआ पर स्क्रीन पे लाइंस ही लाइंस आ रही है, पिक्चर शेकी सी है, साउंड डिस्टॉर्टेड सा है, हीरो का फेस जो है ना वो zigzag वैसे करके आ रहा है। और फिर एक्सपर्ट जो होता था उसको अनाउंस किया जाता था कि भाई ट्रैकिंग को एडजस्ट करो, और VCR के फ्रंट पैनल में वो एक छोटा सा ट्रैकिंग बटन या फिर उसको व्हील बुला दीजिए, थोड़ा लेफ्ट, स्लोली से राइट, और पूरी फैमिली स्क्रीन देख के जजमेंट पा, हाँ अब बेटर है, नहीं नहीं नहीं रुक रुक, ब्लर हो गया वापस से, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर। 90s में एंटरटेनमेंट पैसिव नहीं था, पार्टिसिपेशन मांगता था। कैसेट इंसर्ट करो, ट्रैकिंग सेट करो, टीवी ट्यूनिंग करो, तब जाके मूवी स्मूथ आती थी। ऑनेस्टली ट्रैकिंग एडजस्ट करना तो सच्ची में एक आर्ट हुआ करता था। ज्यादा कर दिया तो पिक्चर और खराब हो गई, परफेक्ट पॉइंट मिला तो सडनली क्रिस्टल जो है क्लियर हो गया। एंड उस मोमेंट पे जो सेटिस्फैक्शन मिलता था, ओफ क्या ही बताऊं मैं, जैसे नासा का मिशन सक्सेसफुल हो गया हो। हर घर में वैसे एक VCR का एक्सपर्ट तो होता ही होता था, यूजुअली इट्स द यू नो फादर्स, एंड मेरे घर में भी माय डैड वाज द वन जो कैच इट कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल ऐसा लगता था कि भाई उसके साथ ही पैदा हुए हो। एंड ही माय फादर यूज्ड टू लव द गैजेट्स, लाइक प्यार थे वो, प्यार मशीनों से प्यार हो जाता था ना उनके, उनके कुछ ऐसा ही था। आजकल HD स्ट्रीमिंग और ये इंस्टेंटली स्टार्ट हो जाती है, तब मूवी देखने से पहले मशीन को इमोशनली कन्विंस करना पड़ता था यार 90s में। और VCR का साउंड भी आपको याद है, कसर अंदर जाते ही कट से आवाज आती थी, फास्ट फॉरवर्ड का वो अग्रेसिव सा एक नॉइज आता था, पूरा एक्सपीरियंस मैकेनिकल फील होता था यार। मतलब 90s का एंटरटेनमेंट इसीलिए मेमोरेबल

लगता है क्योंकि उसमें एफर्ट भी था और स्किल भी था। एंड ऑनेस्टली आज भी ऐसे कोई ब्लरी सा वीडियो देखो तो क्या अरे लगता है कि उस जमाने का है, उस जमाने का है। ट्रैकिंग थोड़ा और ठीक करो, ट्रैकिंग थोड़ा और ट्रिक करो। इनफैक्ट VCR में अगर आपको पता है कि नहीं पता है आई डोंट नो, सो जहाँ पे कसेट इंसर्ट करते थे वो एक जगह होती थी, प्ले रिवाइंड ये वाले बेसिक बटन आपको सामने दिखते थे, बट उधर ही एक साइड में हिडन जो है सॉकेट हुआ करता था। अगर आप उसका फ्लैप खोलते थे तो अंदर सारे के सारे छोटे छोटे बहुत सारे बटन्स होते थे जिनको हमें कुछ नहीं पता था कि इसको करना क्या है इसका। ओनली माय डैड यूज्ड टू नो उसको, आई थिंक ही या है ना, याद आया ना, यही यही। सीरियसली रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर स्टे ट्यून्ड।

0: Tushahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
4: पेंसिल से कसेट की रील सुलझाना, क्रश का नाम हार पे लिखकर हाय शर्माना, ऐसा था 90s का जमाना। ये है मस्ती 90s मिक्स टेप, जाने जाना।
6: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मस्ती 90s मिक्स टेप। जी हाँ, थोड़ा आपके साथ थोड़ी देर और हूँ आपके साथ यहाँ पर, बट लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट, राइट भाई। हमने आई थिंक पिछले दो एपिसोड में साइकिल हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी एपिसोड फॉर सम रीजन, तो मैंने सोचा इस एपिसोड में भी साइकिल की एक और अतरंगी। आप देख रहे हो साइकिल एक है, 90s की बातें अलग अलग तरीकों से। एक एपिसोड में हमने बात की कि यू नो, जब हम साइकिल को वो रिवर्स पेडल मारते हैं तो वो एक तरह का स्वैग होता है, जब खड़े होकर ऐसे करके चलाते हैं तो वो एक तरह का स्वैग होता है। एक और स्वैग था जिसके बारे में अब मैं बात करने वाली हूँ भाई। स्पेशली साइकिल चलाते वक्त एक स्टेज आता था जहाँ पे यू नो नॉर्मल राइडिंग जो है ना बोरिंग लगने लगती थी 90s में, और फिर स्टार्ट होते थे ये अल्टीमेट स्टंट के चीजें, हाथ छोड़ के साइकिल चलाना, है ना, किया है ना, ट्राई किया है ना। बस 2 सेकंड्स के लिए ही सही, पर उस मोमेंट में फील आता था जैसे ओलंपिक का स्टंट परफॉर्म कर दिया हो। बॉडी फुल बैलेंस मोड, आंखें एकदम स्ट्रेट, अंदर पैनिक मोड फुल ऑन, बट ऊपर से फेक कॉन्फिडेंस, है ना। नेचुरली यू नो फ्रेंड्स साइड में यू नो इम्प्रेस्ड ऑडियंस, अरे वाह वाह, मतलब 90s में ब्रेवरी प्लान नहीं होती थी, सडनली एक्टिवेट हो जाया करती थी। कोई ट्यूटोरियल नहीं होता था, कोई सेफ्टी गियर नहीं होता था, बस एक दिन मन करता था और आज हैंड्स फ्री ट्राई करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट ऑब्वियसली मोस्टली डिजास्टर, हैंड जो हैंडल थोड़ा सा वॉबल करेगा, पैनिक ब्रेक्स लगेंगे साइड के ग्रास में, कितने घुटने तो चले हुए इतनी बार इस चक्कर में, पर नेक्स्ट डे वापस से हम ट्राई करते थे, क्योंकि 90s के बच्चों में आई थिंक फियर से ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी। साइकिल राइड्स भी कितनी सिनेमैटिक सी लगती थी, नहीं, शाम की हवा चल रही है, दोस्तों के साथ साइकिल में रेस लगा रहे हैं, स्टंट मोड में चले जा रहे हैं, सो कभी एक हाथ, कभी नो हैंड्स, कभी यू नो पूरा कॉलोनी फॉर्मूला वन बना हुआ है। आजकल सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस पहले आते हैं, तब कॉन्फिडेंस पहले आ जाता था, एंड ऑनेस्टली उसी फियरलेस एनर्जी की वजह से 90s चाइल्डहुड इतना एडवेंचरस लगता था कि सिंपल रोड, सिंपल साइकिल्स, पर इमेजिनेशन फुल एक्शन फिल्म के जैसे। आज भी मतलब कोशिश तो ये करती, आई थिंक साइकिल, टू व्हीलर साइकिल से ही मेरे को ये जो टू व्हीलर बाइक्स एंड स्कूटीज का जो शौक है वहीं से आया हुआ है, इट इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम देयर, एंड मेरी सारी प्रैक्टिस साइकिल पे बिकॉज हो रखी थी, इसीलिए जब मैं बाइक्स के साथ स्टंट्स किया करती थी, स्टॉपी व्हीली ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इट केम वेरी इजीली एंड नेचुरली टू मी बिकॉज आई हैड ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड अ लॉट विद द साइकिल। TMI? No. Yes, I used to do that once upon a time. हाल ही में I think dad के जाने के बाद we let go of my motorcycle, my bike. But yeah, I just loved it. सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा टच ही हो गया है. हम गाने सुन के वापस आएंगे. ओके, स्टे ट्यून्ड.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। 40% off, 40% joy Alukas,
2: 40% off, oh my god, let's go,
3: offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge, joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale, flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry and 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.
4: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

प्रेम, निशा, राहुल, अंजलि, टीना, इन नामों से अपना पन फील करने वाले दिन। 90s नॉस्टैल्जिया का आईवी ट्रिप, मस्ती 90s मिक्स टेप। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर वन लास्ट टाइम, एटलीस्ट इस एपिसोड के लिए, आज के दिन के लिए। मस्ती 90s मिक्स टेप आप सुन रहे थे, बोलना पड़ेगा। मैं हूं अंत्रा आपके साथ, एंड यहां पर बस इस नॉस्टैल्जिक सी स्माइल और एनर्जी के साथ आज का ये मस्ती 90s मिक्स टेप यहां पे पॉज ले रहा है। आप पूरे दिन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपने जहन में, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, है ना। आज फिर से हम 90s के उस दौर में गए जहां स्टील टिफिन का रबर बैंड मिसिंग होना भी मॉर्निंग क्राइसिस हुआ करता था। हीरो की एंट्री स्लो मोशन में हवा और डस्ट के साथ शूट होती थी, कॉइन बॉक्स में कॉइन्स फंस जाया करते थे, और गली क्रिकेट का स्कोर बोर्ड वॉल पे चौक से बनाया जाता था। रिमोट को टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे करके टीवी को चलाना, फॉग मशीन का डिस्को सॉन्ग को ड्रीमी बनाना, फैंटम सिगरेट्स का हीरो का फील देना, केबल ऑपरेटर को सुपर हीरो ट्रीट करना, वीसीआर ट्रैकिंग एडजस्ट करना, और साइकिल पे हैंड्स फ्री स्टंट, ऑफ कोर्स वो तो बनता ही बनता। एंड ऑनेस्टली आपने नोटिस किया, 90s में हर छोटी चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, पर इसीलिए ज्यादा मेमोरेबल भी थी। एंटरटेनमेंट एफर्ट मांगता था, कम्युनिकेशन पेशेंस मांगता था, और फन इमेजिनेशन मांगता था। आज कन्वीनियंस ज्यादा है, पर उस वक्त इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था। हम चीजों को सिर्फ यूज नहीं करते थे, उनके साथ कहानियां बना लेते थे, और बॉलीवुड भी एग्जैक्टली वैसा ही था। यू नो, स्लो मोशन, हीरोइज्म, फॉग, इमोशन जो है वो फुल ऑन एक्स्ट्रा हुआ करता था। 90s इसीलिए कभी भी आउटडेटेड फील नहीं होने वाला है हमको, क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी या फैशन का एरा नहीं था, फीलिंग का एरा था। वेल, बट थैंक यू वंस अगेन कि हमारे इस पेंडोरा 90s बॉक्स को खोलने के बाद ये जो हमने टाइम स्पेंड किया, आई थिंक दिस इज टोटली प्राइसलेस। आई लव्ड इट, आई होप यू लव्ड इट एज वेल। इसी बात के साथ मुझे दीजिए इजाजत, वापस एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हो जाऊंगी मस्ती 90s मिक्स टेप। बाय बाय एंड टेक केयर।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
2: कैफे म्यूजिक रेबल सिंग इट। नाचने का मन है
3: मेरा भी आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
5: 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
6: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
1: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
7: Time to raise the bar.
8: Ramma.
7: Musti Top 20 Bollywood Chart Busters of the Week. Full on Renuka style.
9: Renuka!
1: Friday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rock star Renuka with the week's top chart busters. Musti Top 20, only on Radio Musti 24/7, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.

0: गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट।

0: किसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना।
1: रात अकेली है।
0: रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
2: कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। जोश में रहो।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
4: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
5: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out.
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: नाम सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back. अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: Order today from Gigi Mart, your personal grocer.
2: They are fresh. They are hot.
3: वक्त बर्बाद ना दिन बाद।
0: They are happening.
4: From rocking the charts to ruling the countdown, ये है Masti Top 20. Pumping up Friday evenings 5 p.m. onwards, the latest and the brightest, the week's top chart busters. Masti Top 20, only on Radio Masti 24/7 Live, the only live Bollywood radio across Southeast Asia since 2009.
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
1: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
2: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: And here we go live. Hello, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट और आप रोज की तरह मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट कर रही हूँ आपके साथ सीधा सिंगापुर से। This is shimmering, high tech studio, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल हमारे आप की तरह जो कि बहुत ही जगमगाता झिलमिलाता है, जिससे आप मुझे दुनिया के किसी भी कोने से सुन सकते हैं, हमारा प्यारा रेडियो मस्ती का ऐप। Well, this is me, मुग्धा। कैसे हैं मेरे दोस्तों? अब आप चाहे ट्रैफिक में फंसे हो, चाहे किचन में बिजी हो, या बस ऐसे ऑफिस के काम से थोड़ा मोड़ा ब्रेक लेकर के सुकून ढूंढ रहे हो, आप अपने फोन में मस्ती हैंग आउट कहीं भी प्ले कर सकते हो। बिकॉज जैसा कि मैंने आपसे बताया, हमारा ऐप जो है ना वो 24/7 ऑन रहता है और आप उसको दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी किसी भी वक्त सुन सकते हो। यू कैन एंजॉय इट एनीवेयर एनी टाइम। यस, चल रहे हो, नहीं चल रहे हो, लेटे हो, नहीं लेटे हो, मैं आपके साथ हमेशा रहने वाली हूँ। आज 28th मई। देखो भाई, ऐसा है ना कि वीकेंड एक कदम दूर है, समझ रहे हैं आप, एक कदम। और पता है आज का दिन बड़ा धांसू है, क्योंकि आज एक तरफ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल हैमबर्गर डे, यानी कि डाइटिंग को मारो ढिशक्याओ गोली और एक जूसी बर्गर उठाओ और खा जाओ। लेकिन वेट, चटोरी बातों के साथ थोड़ा दिमाग चलाते हैं। मेरे इंटेलिजेंस कैप्सूल से कुछ निकल के आया है। डू यू नो मैं तेनु के ना प्यार करदा, डू यू नो, यार मैं तो ऐसी हूँ। आज 28 मई और आज ही के दिन 1959 में दो छोटे से बंदर, जी बड़े काम का बंदर, दो छोटे बंदर एबल और बेकर, इनको नासा ने स्पेस में भेजा था और वो सही सलामत जिंदा वापस भी आ गए थे। सोचो, एक तरफ हम बर्गर खा रहे हैं और एक तरफ आज के दिन 1959 में वो दोनों स्पेस ट्रैवल कर रहे थे। बताओ जरा, इसे बंदर को और भी किसी पिक्चर में ट्रेन किया गया था ना स्पेस में भेजने के लिए। डू यू रिमेम्बर कौन सी फिल्म है वो, मुझे बताना। खैर, इसी बात पे चलिए।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद RJ मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: Hi, welcome back. मैं हूं मुग्धा आपके साथ और आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर सीधा मेरे स्टूडियो से। दोस्तों, टेक्नोलॉजी जब कमाल करती है तो बड़ा मजा आता है, पर टेक्नोलॉजी जब गुगली डालती है तो नजारा देखने लायक होता है। इन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक शो चल रहा था, आई एम श्योर सब लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता चलो उनको बता देती हूँ हुआ क्या था। वहाँ पे ना एक बड़ा ग्रैंड सा शो चल रहा था, 1000 ड्रोन्स का स्टार बाउंड एरियल शो। लोग आकाश में उनकी डबल हेलिक्स फॉर्मेशंस देख रहे थे एंड वाओ वाओ ऐसे कर रहे थे, एंड देन बैम, सडन रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई और उसकी वजह से 89 ड्रोन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और एक एक करके सीधा द डार्लिंग हार्बर के पानी में गिर गए। बताओ जरा, बट दैट ग्लिच वॉज रियली वेरी ब्यूटिफुल, कॉमेंट्स में पढ़ा मैंने। स्पेक्टेटर्स जो है पहले बड़े कंफ्यूज हो गए कि कोई नया स्टंट तो नहीं है जो अचानक से ऐसे आ गया हो, लेकिन देन बाद में पता लगा कि ये तो ग्लिच था। सच में टेक का भी अपना स्वैग होता है, जब थक जाए तो सीधा स्विमिंग पूल में पार्टी करने चले जाते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसी धांसू बीट्स के साथ मूड बना दिया जाए एक धांसू गाने का?
3: होली होली गिद्दे विच नच बदलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जा।
2: Okay, आपके लिए this one.
4: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085 6577।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: Hey, hi, welcome back. मैं हूँ मुग्धा आपके साथ सीधा अपने झिलमिलाते मजेदार ठंडे सिंगापुर के स्टूडियो से। Well, आज ना मेरे पास यहाँ पे कैसी फील गुड वाली खबर है जो सुन करके आपको ऐसे आपका सीना गर्व से फूल जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। Yes, एक ग्लोबल सर्वे आया है और उसने ये साफ किया है कि पूरी दुनिया में अगर माइग्रेंट्स के लिए यानी हम जैसे लोगों के लिए कोई सबसे सेफ जगह है और जन्नत है तो वो हमारा प्यारा सिंगापुर। इसने आइसलैंड, स्विट्जरलैंड ऐसे यूरोपियन देशों को पीछे छोड़ दिया, कई सारे देशों को 95.4 आउट ऑफ 100 का धांसू स्कोर मारा है। सोच रहे हैं आप 95.4 आउट ऑफ 100, इतना तो मेरा कभी ओवरऑल स्कोर भी नहीं रहा होगा। नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरे पास अच्छे मार्क्स थे। अब आप सोचोगे इसमें कौन सी नई बात है, बस पुराना डेटा उठा कर देखो है? लोग हमेशा ही सोचते हैं कि यूरोप के देशों में असली सुकून मिलता है, वहीं जाके बसेंगे, पर सिंगापुर इज सुपर से ऊपर। सिंगापुर ने दिखा दिया है कि आधी रात को भी अगर आप यहाँ सड़क पर फोन हाथ में लेकर निकल जाओ तो आपको किसी का डर नहीं है। लो क्राइम रेट है और ऐसी स्टेबिलिटी है कि दुनिया देखती रह जाए। यहाँ पे रह करना ये सेफ और टेंशन फ्री जो लाइफस्टाइल है, मैं खुद उसको फील करती हूँ। आप उसको समझ सकते हो जब आप एक नए देश में अपना घर बनाते हो और आपको पता लगे कि वो दुनिया का सबसे सेफ स्पेस हो सकता है, सबसे सेफ घर है, तो प्राइड इज ऑन दिस लाइक नेक्स्ट लेवल। जिसको बताओ कि हम सिंगापुर में रहते हैं, ओ माय गॉश, अभी पढ़ा हमने, आई नो। आपने कभी ऐसा महसूस किया यहाँ पर ऐसे चलते चलते, मुझे बताना। और आप मुझे जहां से भी सुन रहे हो, आप किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी सिटी से सुन रहे हो, मुझे बताना कि आपने भी अपने शहर में ऐसा कुछ सेफ फील गुड महसूस किया हो।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर,
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी क्या बात जी,
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, वेलकम बैक टू मस्ती हैंग आउट। आप सुन रहे हैं मुग्धा को, दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। वेल मई का महीना है और खत्म भी होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस सुहाने से मौसम में अगर आपको कहीं से खुशबू आ रही है आम की तो बिल्कुल सही आ रही है। अगर आपने आम नहीं खाए अभी तक तो मजा अधूरा है। आपको पता है आम खाने का एक कमाल का फायदा क्या है? यस, यही तो है आज का सबसे क्विक इंटेलिजेंस कैप्सूल अपडेट। आम को किंग ऑफ फ्रूट्स कहते हैं, पर क्यों? विटामिन सी और विटामिन ए भरपूर होता है इस फ्रूट में, जो क्या करता है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और साथ में धूप और गर्मी का जो मौसम होता है स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि ये वहां पर सुपर समर सीजन है, तो आपकी स्किन को ना एकदम से ग्लोइंग और रिफ्रेश रखता है, इसलिए आम खाना चाहिए। और टेस्ट तो खैर है कमाल, हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो अगर आपको सिंगापुर में बैठे बैठे असली मिठास देश वाली चाहिए इंडिया की, तो जीजी मार्ट लेकर के आए हैं मैंगो सीजन स्पेशल, सीधा भारत के खेत से आपके घर तक, और वो भी कोई एवे वाले आम नहीं। वैसे तो आम सारे अच्छे होते हैं, पर देवगढ़ के अल्फांजो हैं जो कि 39 सिंगापुर डॉलर पर बॉक्स मिलेंगे, एंड रत्नागिरी के हैं अल्फांजो जो कि 35 सिंगापुरियन डॉलर्स पर बॉक्स में आपको मिलेगा। अगर आपने SGD 70 के ऊपर ऑर्डर किया तो डिलीवरी फ्री मिलेगी, यस। और अगर आपने NEW10 का कोड का इस्तेमाल किया, जब आप सारी परचेजिंग करने के बाद चेकआउट करते हो, NEW10 अगर आपने कोड लगा दिया, 10% का इंस्टेंट ऑफ मिलेगा आपको, समझ रहे हैं? एक और ऑफर है, अगर आप जेजे मार्ट की वेबसाइट पे जाते हैं और रजिस्टर करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पे भेजते हैं 9151893 पर, तो आपको और अमेजिंग ऑफर्स मिलेंगे। तो ggmartonline.com पर जाइए और रसीले आमों का मजा उठाइए, समझे?

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, वेलकम बैक, दिस इज मी मुग्धा, आप मुझे सुन रहे मस्ती हैंग आउट पर। एंड नाउ मैं आ चुकी हूँ आपके साथ शो के इस सेकेंड आवर में। एंड एज वी ऑल नो, शो का ये सेकेंड आवर इज ऑल अबाउट द बॉलीवुड सीजन। जी, आज मैं बॉलीवुड सीजन में बात करने वाली हूँ साउथ सेंसेशन सामंता रुद्र प्रभु की, और उनकी आने वाली एक फिल्म है ना, उस पर एक बहुत ही धांसू अपडेट आया है। उनकी एक नई फिल्म आ रही है माँ इंती बांगरम, आई एम सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग, पर काम की बात यह है कि उसमें जो इनका एनर्जेटिक अवतार दिख रहा ना टीजर में, आउट हो चुका है इस फिल्म का। सामंता इसमें एकदम रॉ एक्शन अवतार में भाई। पहले ये फिल्म ना उनके बर्थडे पर रिलीज होने वाली थी, पर अब मेकर्स ने इसकी एक नई और एक फ्रेश रिलीज डेट को अनाउंस किया है। फैंस ने जब उनको लड़ते हुए देखा ना स्क्रीन पे, बाय गॉड दैट एक्शन वाज ऑन अनदर लेवल। एक दबंग हाउसवाइफ और उसके बाद क्या सुपर कूल लड़ाई, माय गॉड। एंड देन मुझे लास्ट में ग्लिम्स मिला गुलशन देवैया का, यार ये एक्टर इतना कमाल है ना, जहां भी दिखता है पता लग जाता है कि अब इस फिल्म में कुछ सॉलिड होने वाला है। वैसे क्या आपको पता है कि सामंता ने अपने फिजिकल फिटनेस और स्टंट्स के लिए हार्डकोर मार्शल आर्ट्स और वेपन ट्रेनिंग सीखी है? अभी तो उनके एक्शन सीक्वेंसेस एकदम रियल लग रहे हैं, सच में बहुत ही रियल है। मतलब ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस मैंने अभी तक बॉलीवुड में नहीं देखे, दे समटाइम्स लुक वेरी फेक एट अ पॉइंट, पर ये तो बहुत सॉलिड है, बहुत ही है।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: की बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय टैलेंट से मुझे याद आया, मैं हूँ आपकी मुग्धा और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट पर। आई नो आई एम वेरी टैलेंटेड। वैसे मैं टैलेंट से आपको बताती हूँ कि एक फिल्म आ रही है वरुण धवन की और द नेम ऑफ द मूवी इज जवानी तो इश्क होना है। उसका जो गाना है ना वो आउट हो चुका है और हमारे फेवरेट ब्लॉकबस्टर चुनरी चुनरी उसको एक नए अंदाज में पेश किया गया है। Well, मैंने ये गाना सुना है। अगर मैं नहीं सुनती और सिर्फ किसी के कहे सुने में आती तो अलग बात होती, पर मैंने चूंकि सुना है ना, very disappointed। पता नहीं लोगों के reactions mix क्यों हैं। Only the best part is the female आवाज। Start में तो पता नहीं कुछ अजीब ही लग रहा है ये गाना। ऐसा अमेजिंग एनर्जी से भरपूर गाना है जिसको थकेला सा बना दिया है बिल्कुल। मतलब ना तो मुझे डांस की वाइब आ रही है, ना तो मुझे चुनरी चुनरी की वाइब आ रही है। बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है इस गाने को लेकर के। मुझे ऐसा लगता है कि उस गाने को अगर एज इट इज ही ले आते ना, सेम बीट सेम पेस सेम एनर्जी सेम सिंगर्स के साथ, अरे भैया राइट्स ले लेते, आप ही की तो पिक्चर है। अभिजीत, हमारे प्यारे अभिजीत जी की आवाज थी उसमें, अनुराधा श्रीराम की फीमेल वॉइस। अगर ऐसे ही कैसे गाने को उठा के थोड़ा नए बीट्स पर डाल देते तो भी मजा आ जाता, पर इन्होंने तो पता नहीं क्या खिचड़ी पका दी है। आई एम जस्ट नॉट लाइकिंग दैट सॉन्ग। एनीवे, टैलेंट से एक और चीज मुझे याद आई। अगर आपके पास बहुत अमेजिंग टैलेंट है, आपकी वॉइस में एनर्जी है और आपके अंदर ये मेरी तरह बात करने का टैलेंट है, तो रील बनाने के अलावा आप और भी काफी कुछ कर लेते हैं, देन वी हैव समथिंग फॉर यू। द आरजे अकेडमी ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क, हमारे एडमिशन आपके लिए ओपन है। एक कमाल का हाइब्रिड मॉडल है जहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस और उसके साथ साथ इन स्टूडियो का लाइव एक्सपीरियंस भी करने को मिलेगा। 12 आवर एक्सपर्ट ट्रेनिंग होगी, इंटेंस वाली, नहीं नॉट द फिटनेस ट्रेनिंग, हमारी आरजे ट्रेनिंग। हाँ, और फ्लेक्सिबल सिलेबस है तो पूरा फोकस जो है वो आपको मिलने वाला है। अगर आपकी उम्र 14 साल या उससे ज्यादा की है तो जल्दी से अप्लाई करिए। info@radiomasti.com.sg पर एप्लीकेशंस भेजिए, ईमेल करिए और देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो मंगा लीजिए। देर मत करिए, इंट्रो मेल करना है आपको हमारे info@radiomasti.com.sg पर। एक छोटा सा अपना इंट्रो मेल करिए और एप्लीकेशन फॉर्म आप तक पहुंचेगा। समझ

मौका होगा अगर आप सिलेक्ट हुए तो हमारे स्टूडियो से एक लाइव शो होस्ट करने का। बिना देर किए सुनते रहिए अगला ट्रैक और खुद को तैयार करिए माइक के इधर आने के लिए।

0: to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Veg and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ.
5: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ.
6: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां.
7: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग. द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। Only on Masti Hangout with RJ Mugdha, Radio Masti 24/7 Live. Radio Masti 24/7 Live.
1: Hi, welcome back. मैं हूँ मुग्धा आपके साथ और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट पर। ये जो महीना है ना, बैक टू बैक फेस्टिव सीजन्स का है। कुछ आ रहे हैं, कुछ जा चुके हैं, कुछ आ ही जाएंगे कभी ना कभी। हमारे घरों में कौन सा त्योहार कम होते हैं, है ना? कभी किसी की शादी, कभी किसी के घर कुछ, कभी किसी के घर कुछ। कार जाते रहते हैं, शादियां होती रहती हैं। शादी का मतलब क्या होता है? ढेर सारी तैयारी, ग्लैमरस कपड़े और जेवर, ज्वेलरी, गोल्ड एंड डायमंड्स एंड शॉपिंग्स एंड व्हाट नॉट। पर आजकल के सिनेरियो में ना सब चीजें थोड़ी महंगी हो रही हैं, महंगाई बहुत सता रही है। तो हम ना ढूंढते कोई ऐसी जगह जहां पे क्वालिटी टॉप नॉच हो और सॉलिड बजट हो जाए, राइट? मैं हूं ना, मैं हूं। मेरे पास सारे फैशन स्टार्स एंड वेडिंग शॉपर्स के लिए एक खबर है, दिल थाम लीजिए, बिकॉज जोया लुकास लेके आ रहे हैं वर्ल्ड फेवरेट ज्वेलर आपके लिए द बिगेस्ट ज्वेलरी सेल। बिगेस्ट इसलिए क्योंकि इनके पास है फ्लैट 40% ऑफ का इनक्रेडिबल ऑफर ऑन मेकिंग चार्जेस ऑफ गोल्ड डायमंड पोल की और ऑल द प्रेशियस ज्वेलरी। सोचो पूरे 40% ऑफ या मेकिंग चार्जेस पे। यही तो है मेकिंग चार्जेस जो सारा खेल करते हैं गोल्ड ज्वेलरी में। शॉपिंग पर बचत भी हो जाएगी और लुक, अरे भाई उसकी तो बात ही छोड़ दो। ऐसे ऐसे लुक्स हैं इनके पास कि लुक भी कहेगा क्या लुक है। लुक कैसी बातें करते हो। खैर तो ऐसा है कि ये ऑफर जो है ना वो 14th जून 2026 तक वैलिड है। इजी पेमेंट प्लान्स भी हैं एंड 100% वैल्यू का डायमंड एक्सचेंज भी है। इतना कुछ आपको कहीं मिलेगा? शादी के पैकेज में लड़का भी इतना कुछ लेके नहीं आता है जितना आपको जोया लुकास दे रहा है। और शॉपिंग भी शादी के लिए करनी है, इससे परफेक्ट क्या हो सकता है। तो इस वीकेंड का प्लान बनाइए और लिटिल इंडिया के जोया लुकास शोरूम में जाइए और कलेक्शन में से वो परफेक्ट स्पार्कल अपने कलेक्शन में ऐड कर लीजिए।

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकाज़म मिलेगा। Only on मस्ती हैंगआउट विद RJ मुग्धा। Radio मस्ती 24/7 live.
3: वैसे धमाकेदार खबर तो एक और है। Welcome back, मैं हूँ मुग्धा। अगर आप सही एक्टिंग जानते हो ना और पावर पैक्ड सिनेमा के फैन हैं, तो बॉलीवुड से एक बहुत बड़ा और बहुत ही फ्रेश अपडेट आपके लिए बहुत काम का है। विपुल अमृतलाल शॉ की आने वाली एक फिल्म है गवर्नर, एंड उसका धांसू सा ट्रेलर आउट हो चुका है। और इस फिल्म की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इसमें पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं एक्टिंग के दो धांसू गुरुज, महागुरुज, हमारे प्यारे मनोज वाजपेयी एंड अदा शर्मा जी। ट्रेलर में ना मनोज वाजपेयी एकदम ऐसे हिला देने वाले अवतार में आपको दिखाई देंगे, और उनकी थॉरो एक्टिंग के साथ अदा शर्मा का जो परफॉर्मेंस है कमाल है। अदा को देख के लगता नहीं है कि वो स्क्रीन पे क्या कमाल करने वाली है, बट वो जब स्क्रीन पे आती है तो कमाल ही करके जाती है। ये जो यूनिक जोड़ी है ना और कहानी की इंटेंसिटी है, इसको देखने के लिए तो फैंस ट्रेलर देख के बरकरार है, बेकरार है, और बेकरारी बरकरार है। बाय गॉड, मेरी हिंदी उर्दू कई बार मेरी जुबान लड़खड़ा देती है। खैर, क्या आपको पता है कि मनोज वाजपेयी को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए अभी तक कितने नेशनल अवार्ड मिले हैं? 3। और देश का सबसे सम्मानित पद्मश्री भी मिल चुका है। राइट, हर रोल में जान और जादू दोनों फूंक।

0: वेबसाइट, अगर आपने नहीं देखा इसका ट्रेलर तो आप ही देख लो, है ना।
1: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Hey, I know you all are enjoying Masti Hangout, लेकिन आपको पता है 7 बजने वाले हैं, एंड क्या होता है 7 बजे? We have our brand new segment जिसका नाम है The Cricket Corner. कोने में कोई लेके नहीं जाएगा, जितेश आएंगे इधर कोने में, yes, और वो देंगे IPL का एक क्विक हाईलाइट, एंड देन आपकी RJ मुग्धा विल बी बैक, आई एम बैक वाले स्टाइल में.
4: तो हरी लचके जब कमरिया सारा

0: आधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, शो के थर्ड एंड द लास्ट आवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक, मैं हूँ मुग्धा आपके साथ एंड दिस इज द लास्ट आवर। तो हमेशा कुछ अमेजिंग बातें तो मेरे पास होती है। यू नो वॉट, एक ऐसी वीडियो इंटरनेट पे आई है जिसने पूरे इंटरनेट पे तबाही मचा दी है। व्हाई? बिकॉज़ हर कोई ये सोचने में लगा है, इज इट रियल और एआई? आजकल कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये खबर आ रही है सीधा पोर्टुगल से, पोर्टुगल। वहां की एक लड़की है मिलेना, उनके साथ पता है रात को एक बड़ा अजीब सा वाकया हुआ। इट्स नॉट ए हॉरर। वो क्या कर रही थी, रात को एक नॉर्मल सा सेल्फी वीडियो बना रही थी एंड तभी अचानक बूम, पीछे का पूरा आसमान एक सुपर ब्राइट इलेक्ट्रिक ब्लू टर्कोइज रोशनी से भर गया, चमक उठा। ऐसा लगा कोई यूएफओ आ रहा है सीधे सर पे लैंड करने के लिए। एक बेहद रेयर और एक बहुत बड़ा मीटियर पूरे होराइजन को रोशन करते हुए निकल गया सर के ऊपर से। एंड शी वाज लाइक, ओ माय गॉड, बेस्टेस्ट मीटियर वीडियो है ये अब तक का। नेटिजन्स तो कह रहे हैं, देखने वाले भी यही कह रहे हैं, आई एम श्योर साइंटिस्ट भी यही कह रहे हैं। दिस इज नो CGI, दिस इज नो VFX, दिस इज अ लाइव शो कुदरत का, बाय गॉड। साइंटिस्ट ने कंफर्म किया है कि एक बहुत ही ब्राइट बोल्डी या फिर एक फायरबॉल था जो कि एक कॉमेट का टुकड़ा था एक्चुअली। और पता है इसका रंग ब्लू और ग्रीनिश क्यों था? क्योंकि उस कॉमेट फ्रैगमेंट में मैग्नीशियम और निकल की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे आते हैं लगभग 1,00,000 माइल पर आवर की स्पीड पर जलता है ये। तभी तो ये अद्भुत नजारा देखने को मिला, अद्भुत, अकल्पनीय। सच में अगर ऐसी कोई चीज लाइव रिकॉर्ड हो जाए ना, हाय, मेरे हाथ से ऐसा कुछ करने बैठू मैं तो फोन ही छोड़ दू वहीं पे, गिर ही जाए मेरे हाथ से फोन। अरे यार, देयर इज अ सुप्रीम पावर जो इन सब चीजों को हैंडल करती है। कौन कब क्या किसके फोन में क्या रिकॉर्ड हो जाएगा, यू नेवर नो। There is a supreme power, God. एक ही है। अगर आप होते तो आपका रिएक्शन क्या होता है? ऐसा

मैं तो भूल ही जाती कि मैं कुछ रिकॉर्ड भी कर रही थी. मैं तो भाग के जाती पहले पापा मम्मी को बताने के लिए. Oh my, I'm so crazy. Anyway, आइए अगला गाना एंजॉय करते हैं.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो एक केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग, या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जीजी, जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाजी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।
2: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकैज़म मिलेगा, ओनली ऑन मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
3: हाय, दिस इज वन थिंग जो मुझे कहीं भी खींच के ले जा सकती है, दैट इज गुड फूड। मैं हूँ मुग्धा आपके साथ। अगर आपको रॉयल नॉर्थ इंडियन खाना पसंद है तो मेरे पास एकदम शाही खबर है, रॉयल अंदाज में। यू नो, रैफल सिटी में हमारा प्यारा शाही महारानी एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसने 25 साल आपकी सेवा में गुजारे हैं, एंड दे हैव कंप्लीटेड 25 इयर्स। और अब 25 इयर्स कोई छोटा मोटा माइलस्टोन तो होता नहीं है। इंडिया में तो लोग 25 साल पूरे होने पर दोबारा शादी कर लेते हैं सेम इंसान से। 25 इयर्स ऑफ हैवी मैरिज। तो एक शाही खबर यह है कि ये जो 25 साल पूरे हुए हैं ना, इस ग्रैंड माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए वो लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहद खास तोहफा, उनके सबसे आइकॉनिक सिग्नेचर डिशेस, जैसे कि चिकन मक्खन वाला, तंदूरी चिकन, पालक पनीर, जो कि पहले ऑलमोस्ट 32 सिंगापुर डॉलर से ज्यादा के हुआ करते थे, अब वो आपको मिल रहे हैं जस्ट 25 प्लस सिंगापुर डॉलर्स में। यस, दैट्स राइट। देखा, कंपेयर करो तो चीजें कितनी अच्छी लगने लगती हैं। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, पर टेबल मिनिमम $100 स्पेंड करने हैं और आप इस शाही दावत का मजा उठा सकते हैं। और ये तो यूं हो जाएगा क्योंकि इनका खाना इतना अमेजिंग है, आपको पता नहीं लगेगा कि पर टेबल कब निकल गए $100 आपकी जेब से। सही बता रही हूँ, इट्स अ वेरी लिमिटेड टाइम डाइनिंग ऑफर, 30 जून तक ही है, अभी भी एक महीना है, मैं जा सकती हूँ फिर से? यस, 30 जून 2026 तक वैलिड है। तो देखिए, परिवार के साथ प्लान करिए और कॉल करिए 6235-8840 पर, या इनकी वेबसाइट पर जाइए ताकि आप अपनी सीट्स को पहले से बुक करा पाइए। एंड वन मोर थिंग, ये जो शाही महारानी है ना, दे हैव ऑलवेज ट्रीटेड एवरी सिंगापुरियन लाइक अ फैमिली। हमारे त्योहार, फेस्टिवल्स, स्पेशल ओकेजन्स, दे हैव जस्ट गिवन अस सो मच लव एंड सो मच स्वीटनेस इन आवर लाइव्स। अब हमारा फर्ज बनता है और हक बनता है और हम करेंगे, इनके फेस्टिवल को और ग्रैंड बनाएंगे, है ना? हम जाएंगे और हम खाएंगे। मैं तो अभी चली जाती हूँ, मैं शो नहीं चल रहा होता तो।
4: Hit us on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore. Check

0: सीधी बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा। ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, वेलकम बैक, दिस इज मी मुग्धा और आप मुझे सुन रहे हैं मस्ती हैंग आउट पर। क्या है ना कि कई बार लोग इंडिया के कई मामलों में बुराइयां करते हैं। मैं यहाँ पे बैठ के कई बार ऐसी खबरें पढ़ती हूँ, ये नहीं है वो नहीं है, पर एक किस्सा है जो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रहा है। व्हाई? वेल्स एक ट्रैवलर मेगन जो है वो इंडिया आई हुई है ना, और उन्होंने अराउंड सुबह 7 बजे ऐसे मजे मजे में एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप से कुछ ऑर्डर कर दिया। एवे बैठे बैठे एक पैकेट ये एक पैकेट वैसे ऑर्डर कर दिया है ना, एंड गेस व्हाट, इन जस्ट 3 मिनट्स, 3 मिनट में जैसे लग रहा बंदा नीचे पड़ा था घर के, ऑर्डर घर आ गया। How the hell is that even possible? 3 मिनट में? Yes. मेगन तो हैरान रह गए भाई, और उन्होंने सोशल मीडिया पे पूरा वीडियो शेयर कर दिया, और वो कहती है कि the UK could never do this. यानी UK में तो लोग इस स्पीड से सपना भी नहीं देख सकते। They couldn't even dream it. I mean, dream in 3 minutes. वहां पे एक्चुअली लोग कमेंट कर रहे हैं कि इंडिया में ना ये जो आपकी ग्रोसरी आपके किचन से नहीं सीधा लाइट की स्पीड से आती है, ये तो बात सही है। इंडिया में ना हर चीज इस वक्त टॉप नॉच आ रही है, सच में टेक और जुगाड़ वहां पे हैरान करने वाला होता है, एंड दिस इज लाइक सुपर कूल, मुझे बड़ा मजा आया, आई लाइक इट। हाँ, सिंगापुर में भी बहुत अच्छा है, आई नो,

0: की बात बोरिंग है, टेढ़ी बात और सरकास्म मिलेगा ओनली ऑन मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: हाय, सब कुछ इतना फास्ट फास्ट फास्ट फास्ट हुआ कि शो का खत्म हो गया पता ही नहीं लगा, है ना। क्लॉक घूम चुकी है, वक्त पूरा हो चुका है, सब चीजें सुपर फास्ट तरीके से खत्म हो चुकी है। मजा आया कि नहीं आज? एक तरफ स्पेस ट्रैवल वाले बंदरों की बात की, धांसु गोल्ड ऑफर्स के बारे में जाना, बॉलीवुड, पोर्टुगल एंड व्हाट नॉट, एंड दैट मीटियोर, ओ माय गॉड, दैट मैजिकल मीटियोर। मैं तो उस वीडियो को ही 3-4 बार देख चुकी हूँ, मजा आ गया देख करके। खैर, फिलहाल मैं आपको बताऊं कि पूरा चक्कर काट के मेरा शो भी यहाँ पर खत्म हो रहा है। मैं झूठ बातें बिल्कुल नहीं करूंगी, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है और ये और वो, नहीं, मुझे जाना है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं और मुझे अगले शो की तैयारी भी करनी है, एंड दैट्स अ फैक्ट। जो चीज शुरू होती है उसको खत्म तो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नॉन स्टॉप बोलती रही एवर एंड एवर एंड एवर, आप मुझे बोर हो जाएंगे। सो कुछ चीजें शॉर्ट एंड सिंपल स्वीट अच्छी लगती है, है ना। हम मिलेंगे एक नए शो पे, एक नए सफर पे चलेंगे अगले शो के साथ, जहाँ पे हम बहुत सारी बातें अगेन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मस्ती हैंगआउट प्ले स्टोर से हमारे ऐप को जरूर इंस्टॉल करिए, बिकॉज उससे क्या होगा, नॉन स्टॉप हमारी जो मस्ती है सिंगापुर वाली वो चलती रहेगी। मैं आपकी होस्ट सीधे सिंगापुर स्टूडियो से लेती हूँ आपसे इजाजत, अगले शो में आपसे करेंगे मुलाकात एंड ढेर सारी बात। बाय बाय, टेक केयर।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: मैं महाकवि हरिंद्रनाथ के पास काम किया करता था। वो अक्सर कहा करते थे, रघु, इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी, बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। हैप्पी का मतलब खुशी ना?
2: नहीं, खुश।
1: पूरे जुमले का मतलब क्या है
2: तुम्हें मालूम नहीं?
1: नहीं।
2: मतलब खुश रहना एक सीधी सादी बात है, लेकिन सीधा साधा रहना बहुत मुश्किल है।
3: कर दी ना आते ही बहुत ही कमाल के पते की बात। हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर शुरू हो चुका है डियर मस्ती दिल से। मैं हूं आपके अंतरा, यहां पर आप पहुंचे हूं अलोंग विद ऑफ कोर्स माय अदर जॉक्स, जो कि यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए हाजिर हो चुके हैं। आज का शो शुरू करने से पहले मैं इस तरह से इस बात से शुरू करना चाहती थी, क्योंकि हाल ही में देखे मैंने ये मूवी वापस से, एंड लाइक एवरी सिंगल टाइम ये जो डायलॉग है, it just stayed with me. बहुत ही beautiful. It is very simple to be happy, but very difficult to be simple. And सच में, लाइफ ना काफी सिंपल होती है। हम ही कभी कभी उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, कभी ओवर थिंकिंग से, कभी एक्सपेक्टेशन से, कभी इस डर से कि अगर हमने अपनी बात शेयर की तो सामने वाला कभी समझेगा या मुझे सिर्फ जज करके निकल जाएगा। और फिर होता क्या है, हम बातें अंदर ही अंदर रिपीट करते रहते हैं, सेम थॉट, सेम वरीज, जैसे दिमाग में कोई सॉन्ग लूप पे चल रहा हो। और बाद में कभी कभी हम खुद ही सोचते हैं कि यार इतना सोचने की जरूरत तो नहीं थी। बट उस वक्त वो फीलिंग्स काफी रियल होती है। इसी सिंपल थॉट के साथ हमने डियर मस्ती दिल से का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो शो है, उसको क्यूरेट किया कि अगर कोई ऐसा हो जो हमें पर्सनली जानता ना हो तो शायद हम उससे अपनी बात ज्यादा ऑनेस्टली कह पाएंगे, विदाउट फियर, विदाउट जजमेंट। क्योंकि कई बार अपने लोगों के साथ ही सबसे बड़ा प्रेशर होता है कि वो क्या सोचेंगे। और देखिए ना, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की पर्सनालिटीज हैं, एंड ऑनेस्टली टू ईच टू देयर ओन। हमें हर किसी के हिस्से का सोचने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी अपने थॉट्स हैंडल करते करते काफी थक जाते हैं, तो शायद कभी कभी बस अपना सोचना भी ओके होता है। जैसे फ्लाइट में सबसे पहले आपको ये बोला जाता है दैट पुट योर ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट एंड देन हेल्प अदर्स। सेल्फिशनेस नहीं है वो, सर्वाइवल है दोस्त। और शायद इमोशनल लाइफ में भी ये रोल अप्लाई होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर डियर मस्ती दिल से। लेकर आती हूँ आज की पहली चिट्ठी, जस्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार्ट ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए, GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085-6577।
2: 40% off, 40% joy Alukas,
3: 40% off, oh my god, let's go.
4: Offer aisa ki aap bhi khud ko rok nahi payenge. Joy Alukas laya hai the biggest jewelry sale. Flat 40% off on making charges for gold, diamond, polki and precious jewelry. And 100% value on diamond exchange. Offer valid till 14 June 2026. Visit 412-134 and 320 Serangoon Road. Joy Alukas, the world's favorite jeweler.

0: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से, मैं हूं आपकी अंतरा यहां पर आपके साथ। और ये शो एक काफी सेफ सा स्पेस है, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक ऐसी जगह जहां हम बन जाते हैं रेडियो पर बैठे हुए आपके वो दोस्त जो वैसे तो स्ट्रेंजर्स हैं, बट वी लिसन एंड वी डोंट जज। सच बताऊं कभी कभी लाइफ में ना बस इतना ही तो चाहिए होता है कि कोई बिना जज किए हमें सुन ले, और मुझे लगता है आज की ये चिट्ठी भी शायद वही कहना चाहती है। तो शुरू करते हैं। डियर मस्ती, मैं अपने इंट्रोडक्शन में अक्सर ट्रेलिंग वाइफ कहती हूँ। ये वर्ड मैंने नहीं, दूसरों ने मुझे दिया। जहां जहां हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ मैं भी साथ चली गई, और अब यहाँ पे सिंगापुर में सेटल हूँ फिलहाल। हर जगह घर बनाया, लाइफ सेट की, बट रिसेंटली एक बात रियलाइज हुई कि थोड़ा थोड़ा करके शायद मैं खुद को खो बैठी हूँ। लोग कहते हैं व्हाट अ सैक्रिफाइस, सिर्फ औरत ही कर सकती है। मोमेंटरली अच्छा लगता है बट इवेंचुअली अच्छा नहीं लगता है। अब मैं खुद से पूछती हूँ, हु एम आई? क्या मेरी आइडेंटिटी जस्ट अ ट्रेलिंग वाइफ रह गई है? डियर लिसनर, आपको शायद ये जानकर थोड़ा सरप्राइजिंग लगे, बट स्टडीज के अकॉर्डिंग बहुत सारी ट्रेलिंग स्पाउसेस जो हैं, स्पेशली वुमेन, इस आइडेंटिटी लॉस फेस से गुजर रही हैं। नए शहर, नए लोग, पार्टनर का करियर सेटल करते करते कई बार अपनी इंडिविजुअलिटी क्वाइटली वो साइड हो जाती है, और फिर एक दिन अंदर से आवाज आती है कि मेरे बारे में क्या। और आपका ये सवाल भी इसीलिए उतना ही वैलिड है। यू नो, मेरी मॉम ने मुझे बचपन से एक बात बार बार सिखाई हुई है, एंड ऑनेस्टली वो मेरे अंदर इनग्रेन्ड सी हो गई है। मेरी मॉम आज भी वर्किंग है, एंड वो हमेशा कहती थी और अब भी कहती है कि बेटा बाकी सब बात में, बट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जरूर बनना, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस एक इनविजिबल पावर देती है जिसका इंपॉर्टेंस शायद उस वक्त समझ नहीं आता, बट डिफिकल्ट सिचुएशंस में वो बहुत काम आती है। और शायद इसीलिए लाइफ कितनी भी क्योटिक हो, मेरे दिमाग में एक चीज हमेशा क्लियर रही है, आई विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू स्टे इंडिपेंडेंट। अब तो वो मेरी हैबिट भी है एंड पर्सनालिटी भी, बट क्या हर ट्रेलिंग वाइफ को ये सब अकेले फिगर आउट करना चाहिए? क्या सिर्फ ये वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद को बार बार रीबिल्ड करे? लेट मी कम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। इनफैक्ट ये गाना तो इस वक्त बिल्कुल ही एप्ट बैठता है। पीछे तो पीछे तो आ गए, पर उसके बाद क्या? Stay tuned, let's talk more on Dear Masti, दिल से।
1: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.

0: India now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
1: Good morning!
2: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
3: हाँ जी जी,
2: आधा kg मसूर दाल,
3: जी जी,
2: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
3: जी जी,
2: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
3: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
2: क्या जी?
3: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर. जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com. ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप.
2: वाजी, क्या बात जी.
3: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर.

0: हमने एक लेटर पढ़ा जहाँ पे एक लिसनर हमारे हैं, उन्होंने कहा दैट सालों तक ट्रेनिंग वाइफ बनके हर जगह घर बसाया, बट समवेयर इन द प्रोसेस शी फील्स शी लॉस्ट हरसेल्फ एंड नाउ शी इज आस्किंग हु एम आई बियॉन्ड दिस. You know, there is this beautiful scene in Dear Zindagi जहाँ पे शाहरुख खान प्लेइंग डॉक्टर जहांगीर वो कुछ ऐसा कहते हैं.
1: कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए. अपने आप को पनिश करना बहुत जरूरी समझते हैं. पर why? आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते? क्या बुराई है उसमें?
0: That's right. और मुझे लगता है माय डियर लिसनर, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, ओके, क्योंकि आपने वो सवाल खुद से पूछा कि मैं कौन हूं. एंड बिलीव मी दैट इटसेल्फ इज अ बिग बिग स्टार्ट. हो सकता है अभी रास्ता थोड़ा लंबा लगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी, कभी इधर कभी उधर, बट हर स्टेप के साथ क्लैरिटी आती है, दैट्स फॉर श्योर. और आज के बाद प्लीज अपने लिए ना ये जस्ट वर्ड यूज बिल्कुल भी मत करिएगा. जस्ट होम मेकर, जस्ट ट्रेलिंग वाइफ, जस्ट मॉम, नो. मैंने बहुत बहुत लड़कियों को ये बोलते हुए सुना है एंड हर बार मुझे लगता है कि डू दे इवन रियलाइज कितना कुछ करती हैं वो. आप भी बहुत कुछ करती हूँ और जब आप अपने खुद के काम को एक्नॉलेज करना शुरू करोगे, इम्पोर्टेंस देना शुरू करोगे, तब दुनिया भी धीरे धीरे आपको उसी नजर से देखना शुरू करेगी. क्योंकि ये जस्ट वर्ड आपका नहीं है, ये सोसाइटी की पुरानी कंडीशनिंग का दिया हुआ एक वर्ड है. और थोड़ी देर पहले जो मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रही थी वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ आप उस इनविजिबल पावर को फील करो. मुझे नहीं पता आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, बट मे बी दिस इज योर साइन टू फिगर इट आउट. देखिए आजकल रिमोट वर्किंग है, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज जो है वो है, स्किल्स डेवलप करने के कितने सारे तरीके हैं. आप ट्रैवल करती हो, सिटीज चेंज करती हो, तो मे बी फ्लेक्सिबल वर्क, फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग या कुछ क्रिएटिव, वो डायरेक्शन हो सकता है. और अगर अभी अर्निंग पॉसिबल नहीं भी हो, देन स्टार्ट विद डेवलपिंग योर स्किल्स. खुद में इन्वेस्ट करना कभी वेस्ट नहीं जाता. और हाँ, एक प्रैक्टिकल बात और, घर को संभालना, सबको इमोशनली हैंडल करना, ये सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट्स योर पार्टनर्स टू. तो उन्हें इन्वॉल्व करिए, कॉन्वर्सेशंस करिए, उन्हें बताइए कि आपके अंदर क्या चल रहा है. क्योंकि कई बार लड़कियां जो है ये सोच लेती हैं कि उसको बता के क्या करना है, एंड साइलेंटली हम सब हैंडल करते रहते हैं, बट मे बी ही जेन्युइनली हैज नो आइडिया कि आप क्या फील कर रही हो. सो लेट हिम बी अ पार्ट ऑफ योर थॉट्स एज वेल. क्योंकि चेंज हमेशा बाहर से नहीं आता है, कई बार वो अंदर से शुरू होता है. एंड मे बी दिस इज योर न्यू चैप्टर. ये है डियर मस्ती दिल से. होप दिस हेल्प्स. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
2: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. वेलकम बैक एंड ऑफ कोर्स रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है. नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स. डियर मस्ती दिल से, अनोनिमस लेटर्स का ये सिलसिला जो कि हम यहाँ पर हर ट्यूसडे को करते हैं. वहीं पर थोड़ी देर पहले मैंने एक चिट्ठी पढ़ी थी, काफी

लंबी चिट्ठी थी तो जी हाँ, उसको क्विकली आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू ऑफ वॉट दैट वॉज अबाउट. सो वेल, इट्स अबाउट सम मनी विच वॉज विल्ड टू अ मदर बाय अ सन हु हैज पास्ड ऑन. लेकिन उस बेटे का जो बेटा है वो आज के दिन में बेच चुका है घर, लेकिन जो उसकी दादी के नाम पैसे छोड़ गए थे उसके डैडी, वो अभी उनको साफ साफ वो पैसे नहीं दे रहा है. मुश्किल से बात करने पर थोड़े बहुत पैसे दे रहा है. सो वेल, व्हाट शुड द अदर सिबलिंग डू, जिनके पास हमेशा से माँ रहती आई हैं और पिताजी की भी सेवा अकेले उन्होंने ही करी है. Well, सबसे पहले आई डू वांट टू से कि ये जो चिट्ठी है पैसों के बारे में नहीं है. इट्स अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, केयर, गिल्ट, फैमिली एक्सपेक्टेशंस एंड इमोशनल एग्जॉशन. ऑनेस्टली, बहुत से फैमिलीज इस तरह जो वट एवर यू गोइंग थ्रू, दे गो थ्रू इट क्वाइटली, स्पेशली जब एक बच्चा स्टेप्स अप एंड बिकम्स द प्राइमरी केयर गिवर और बाकी जो होते हैं बहुत कम कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. वट स्टैंड आउट इन योर स्टोरी इज दैट यू एंड योर हस्बैंड स्टेप्ड अप कंसिस्टेंटली, नॉट ओकेजनली बट फॉर ईयर्स. आपने मेडिकल एक्सपेंसिस, नर्सिंग केयर, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इवन फ्यूनरल कॉस्ट ऑफ योर फादर इन लॉ, आपने सब कुछ ध्यान रखा. दैट डिजर्व्स एक्नॉलेजमेंट. और उसी समय केयर गिविंग जो है, शुड नॉट बिकम साइलेंट सेल्फ सैक्रिफाइस टू द पॉइंट वेयर योर ओन ओल्ड एज एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी आर एट रिस्क. कमिंग टू द ग्रैंडसन, लीगली और मॉरली, the money that was willed or meant for your mother-in-law should ideally remain accessible for her care and her needs. The concern is understandable, especially agar jo funds hain wo control ho rahe hain by somebody who is neither the caregiver nor transparent about the finances. Lekin isse pehle ki ye ban jaye ek bada family fracture, perhaps the first step is not confrontation but clarity. इमोशनल कॉन्वर्सेशन नहीं, लेकिन आपको कुछ बातें पर कहना चाहूंगी. सेपरेट कीजिए इमोशंस को फैक्ट से. जो पैसा है उसको लिस्ट कीजिए और देखिए एक तरफ एक्सपेंसेस कितने हैं और एक तरफ कितने पैसे आप खर्च चुके हैं इन द पास्ट ऑन योर मदर इन लॉ. अंडरस्टैंड द लीगल पोजिशन क्वाइटली. किसी को थ्रेटन नहीं कीजिए. एक प्रॉपर कंसल्टेशन एक इंडिपेंडेंट लॉयर से लीजिए जो कि दोनों सबको नहीं जानता है. बट इसी के साथ में आप ये समझिए कि आपको लीगली कितना विल हुआ, हु कंट्रोल्स द एस्टेट और हु हैज द राइट्स टू व्हाट ग्रैंडमदर एक्चुअली हैज. और उसके बाद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन ग्रैंडसन के साथ. डोंट ब्लेम, फोकस ओनली ऑन द ग्रैंडमदर्स केयर एंड फाइनेंसेस. पूछिए कितने पैसे एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट किए हैं और मंथली अमाउंट इन खर्चों के हिसाब से किस तरह से रिलीज किया जा सकता है फॉर हर केयर एंड कैन द रिकॉर्ड्स बी शेयर्ड transparently. और उसके बाद हर महीने उस तरह का अमाउंट लीजिए जो कि आपकी मदर इन लॉ का एक्सपेंसेस बनता है. एक छोटा सा स्ट्रक्चर क्रिएट करने से अकाउंटेबिलिटी आती है. और बहुत जरूरी ये है कि केयर गिविंग जो आप कर रहे हैं उसमें आप खुद फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय ना हो जाएं. यू एंड योर हस्बैंड ऑल्सो नीड रिटायरमेंट सिक्योरिटी, इमरजेंसी सेविंग्स, पीस ऑफ माइंड. सपोर्टिंग अ पेरेंट डज नॉट मीन कि आप अपना सर्वाइवल बाद का सैक्रिफाइस करें. और अगर वो ग्रैंडसन कोऑपरेट करता है तो मेंटेन पीस. इफ ही अवॉइड्स ट्रांसपेरेंसी रिपीटेडली देन यू मे नीड मीडिएशन थ्रू अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी बिफोर रिजेंटमेंट बिकम्स परमानेंट. एंड फाइनली, अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम मी टू यू, डू नॉट कैरी गिल्ट फॉर वांटिंग फेयरनेस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन केयरिंग विद लव एंड कैरिंग एवरीथिंग अलोन इन साइलेंस. फैमिली सर्वाइव करती हैं डिफिकल्ट सिचुएशन सिर्फ सैक्रिफाइस से नहीं, लेकिन ऑनेस्टी, स्ट्रक्चर और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से. आई होप ये हमारा जवाब आपको लंबा जरूर लगा होगा, लेकिन शायद थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने में, सोचने में, अगले कदम उठाने में हेल्प जरूर किया होगा. स्टे ट्यून्ड.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: जो बातें मूवीज में क्यूट लगती है वो रियल लाइफ में रूड लगती है, इसीलिए करने से पहले सोचिए। सो बिल्कुल, मैं आरजे निपर, डियर मस्ती दिल से शो पर आपके साथ। एंड फिल्मों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाइयाँ क्यूट लगती है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत ही रूड लगती है यार। सो डेफिनेटली लड़ाई नहीं करना चाहते हैं हम, लेकिन फिर भी लड़ाई हो जाती है हर बार। ये हेल्दी रिलेशनशिप का असर नहीं हो सकता मेरी जान। सो डेफिनेटली अभी मेरे हाथों में डियर मस्ती दिल से शो पर जो लेटर आया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि वो हमेशा ऑनलाइन होता है, स्टोरीज वगैरह भी वो सीन कर देता है, लेकिन मेरे मैसेजेस सीन करके भी रिप्लाई घंटों घंटों बाद देता है। तो अभी तो दोस्ती बहुत ही कच्ची पक्की सी चल रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस शख्स को इम्पोर्टेंस दूं ना दूं, क्या करूं क्या ना करूं। सोशल लाइफ मतलब सोशल प्लेटफॉर्म की लाइफ जो है ना, और रियल लाइफ जो है ना, इन दोनों चीज़ों में 360 डिग्री का डिफरेंस है। आप सामने वाले शख्स को अभी दोस्त मान रही हैं, आप उससे मिलिए। अगर आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस में अपना फ़ोन टच करने का भी वक्त नहीं मिल रहा है ना, आप इतना ज़्यादा बातों में मशरूफ हैं कि आपको पूरी दुनिया की कोई फिक्र नहीं हो रही है, तो भाई साहब आप एकदम अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप में जाने वाली हैं। लेकिन मिलने के दौरान भी ये डिस्टर्बेंस चल रहा है कि वो सोशल मीडिया नेटवर्किंग पे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन है, आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तब ये अलार्मिंग सिचुएशन है। आप मेरा एग्जांपल ले लो यार, मैं तो चलते फिरते कितनों के मैसेजेस सीन करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं बिजी होती हूँ, मन में आता है कि चलो थोड़ी देर में रिप्लाई करूंगी, लेकिन बाद में मैं भूल जाती हूँ। क्या पता उनके साथ भी ऐसा हो रहा हो, यू नेवर नो। फिलहाल व्हाट आई नो कि अगला गाना कौन सा आ रहा है।
2: आज से जाने मन दिल है तुम्हारा।
1: बिल्कुल ऐसे ही मीठे गाने और मीठी बातें मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ, ओनली ऑन डियर मस्ती दिल से शो पर।

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है, तो 1 केजी आटा,
1: हाँ जी जी,
0: 1/2 केजी मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ, अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी,
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग, व्हाई टू फियर व्हेन जीजी मार्ट इज देयर?
0: क्या जी?
1: जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: देखो, ये जो कॉम्बो ऑफर्स होते हैं या कंपैरिजन ऑफर्स होते हैं ना, ये सिर्फ ग्रोसरी की दुकानों तक अच्छे लगते हैं, इंसानों में नहीं। सो प्लीज किसी को किसी से कंपेयर करना छोड़ दो, प्लीज यार। बिल्कुल, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, डियर मस्ती दिल से शो पर, मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड यू नो व्हाट, मेरे अंदर लाख कमियां होंगी, लेकिन एक अच्छाई ये है, मैंने आज तक किसी एक की वीकनेस को किसी और के स्ट्रॉन्ग पॉइंट से कंपेयर नहीं किया। नहीं, मैं कभी किसी को किसी और का एग्जाम्पल देकर ये नहीं बोलती कि सुनो तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर तो है। नहीं, अच्छा नहीं लगता यार। सबके अंदर कुछ ना कुछ खास होता है, बस ढूंढने वक्त की देर होती है। सो बिल्कुल डियर मस्ती दिल से शो पर, मैं आरजे नुपुर, मेरे हाथों में ढूंढ के ला चुकी हूँ अगला लेटर जो आप हमें भेजते हैं अपने मन की बातें खुलकर लिखकर। सो अभी जो मेरे हाथों में लेटर है उसमें लिखा हुआ है कि हाय, मुझे ये कहते हुए बड़ा अटपटा लग रहा है कि मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, पिछले कई सालों से सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जिसके साथ हूँ मैं, जो मेरा पार्टनर है, वो मुझे हमेशा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से कंपेयर करता रहता है, पॉजिटिवली कि तुम में वो बात है वो उसमें नहीं थी, लेकिन वो मुझे कंपेयर करता रहता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे उसकी बातों का क्या रिएक्शन देना चाहिए। शुरुआत में तो ये चीज़ें मुझे बुरी नहीं लगी, लेकिन अब थोड़ी अटपटी लगने लगी है। सो डेफिनेटली अगर आपकी जगह मैं भी होती ना, तो मुझे अटपटा लगता। तो अभी मैं सिर्फ आपके बंदे के लिए जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं सबके लिए ये जवाब देना चाहूँगी कि देखो, बचपन से ही हमें ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपेयर किया जा रहा है। जब हम स्कूल टाइम थे तो हमारे मार्क्स कंपेयर किए गए, थोड़े और बड़े हुए तो भाई करियर कंपेयर किए गए, फिर और बड़े हुए तो कई बार फिटनेस के मामले में या बॉडी शेपिंग के मामले में भी हमें किसी ना किसी ने कंपेयर कर लिया। सो वी डोंट लाइक कंपैरिजंस एट ऑल, है ना। बहुत वंस इन अ व्हाइल जब कॉम्प्लीमेंट की तरह ये जुबान पर आ जाए, वो भी ऑर्गेनिकली आ जाए, तो अच्छा लगता है। लेकिन आप बात बात पे किसी को किसी से कंपेयर करेंगे तो सही नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपने सबसे पहली बार में अपने पार्टनर को टोका नहीं, दैट्स द मेन फॉल्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम ही किसी को बोल देते ना कि प्लीज यार मुझे किसी से कंपेयर मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, और इतना आप ब्लंटली बोल देते ना, तो शायद ये बात इतनी आगे तक आती नहीं। और अभी भी देरी नहीं हुई है, आप बोल दीजिए कि आपको नहीं पसंद है एक ही कटघरे में किसी और के साथ खड़े होना, आप जैसी हैं उतनी ही बेहतर हैं, उतनी ही खराब है, एक्सेप्ट करना हो तो करो। आप एक बार बोलकर देखिए, सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी यार। फिलहाल मेरे हाथों में जो हिम्मत है वो है

0: बिल्कुल ऐसे ही प्यारे गाने जो आपको सिर्फ एंटरटेन ही नहीं बहुत कुछ सिखा कर भी जाते हैं। डियर मस्ती दिल से शो पर आरजे नुपुर आपके साथ।
1: दिस इज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, द ओनली लोकल कनेक्ट विद ग्लोबल एक्सपैट इंडियंस, एनीटाइम एनीवेयर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual-focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning!
5: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है. एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द माइक येट अगेन.

0: हाय डियर मस्ती, दिल से, आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट दिस पब्लिकली बिफोर. इन फैक्ट ये चिट्ठी लिखने से पहले भी माय हैंड्स आर शेकिंग. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, समवन आई ट्रस्टेड क्रॉस्ड अ लाइन विद मी. एट दैट एज मुझे समझ नहीं आया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है. मुझे ये पता था कि समथिंग फेल्ट रॉन्ग, अनकंफर्टेबल एंड स्केरी. फॉर ईयर्स आई बरीड इट डीप इनसाइड बिकॉज आई वॉज अफ्रेड नोबडी वुड बिलीव मी. एंड ऑनेस्टली आई ऑल्सो वॉन्टेड टू फॉरगेट इट माई सेल्फ. लाइफ मूव्ड ऑन, स्टडीज, वर्क, रिलेशनशिप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड फ्रॉम द आउटसाइड मैं बिल्कुल नॉर्मल लगती हूँ. But the truth is, some memories really never leave. Even today, certain situations, certain words, certain behaviors trigger anxiety in me. I struggle with trust, with emotional closeness, and sometimes I suddenly feel angry or withdrawn without understanding why. The hardest part is this. I keep questioning myself. Why am I still affected after so many years? Why can't I just move on? I have never told my family. A few close people know parts of it, but not everything. Sometimes I feel guilty even bringing it up because I tell myself others have gone through worse. But deep inside, I think that child in me is still carrying fear and confusion. How does someone truly heal from something they never properly processed? And is it too late to seek help after so many years? Gee. सेक्सुअल असॉल्ट की बात हो रही है यहाँ पर, और बहुत क्लियरली लिखा है हमारे इन सुनने वालों ने, लिखने वाले ने, कि उनके साथ जो भी बचपन में हुआ आज तक उस ट्रॉमा से वो आगे नहीं निकल पाए हैं. विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर एंड देन ऑफ कोर्स वापस आके इस चिट्ठी का जवाब दूंगी मैं. इट्स डियर मस्ती, दिल से, वेयर योर लेटर्स, योर फीलिंग्स, योर वर्ड्स रिमेन अनोनिमस नो मैटर व्हाट.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर, डियर मस्ती दिल से पे आपका एक और स्वागत दोबारा से रेणुका कर रही है। छोटे से ब्रेक से पहले हमने यहाँ पर बात करी थी एक चिट्ठी की, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई थी बचपन में, एंड द स्ट्रगल ऑफ डीलिंग विद दैट एज अ पर्सन ग्रोज अप, द ट्रस्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और अंदर ही अंदर वो घबराहट, वो हाथों का कांपना सोच सोच के कि शायद इतने सालों बाद भी व्हाई एम आई नॉट एबल टू गेट ओवर इट। Dear Masti, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी थैंक यू फॉर राइटिंग दिस, बिकॉज स्पीकिंग अबाउट चाइल्डहुड सेक्सुअल असोल्ट टेक्स इमेंस करेज। और अगर आज आप में से कोई भी ऐसा इंसान हमें सुन रहा है और रिलेट करता है इस चिट्ठी से, तो प्लीज हियर दिस केयरफुली। जो भी आपके साथ हुआ छोटा नहीं था, इट वॉज नॉट इमेजिन्ड एंड नॉट समथिंग यू शुड हैव हैड टू कैरी अलोन। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अबाउट चाइल्डहुड ट्रोमा ये होता है कि लोग सोचते हैं ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा समय के साथ, बट मेनी टाइम्स ट्रोमा डज नॉट डिसअपियर, इट जस्ट गोज क्वाइट एंड हाइड्स इनसाइड द बॉडी, इमोशंस, रिलेशनशिप्स एंड रिएक्शंस। इसलिए अगर कोई सिचुएशन इसको ट्रिगर कर रही है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी, फियर, एंगर, ट्रस्ट इश्यूज या इमोशनल शटडाउन, दैट डज नॉट मीन कि आप कमजोर हैं। इट मीन्स अ पार्ट ऑफ यू नेवर गॉट सेफ्टी, अंडरस्टैंडिंग और क्लोजर। एंड नो, इट इज एब्सोल्युटली नॉट टू लेट टू सीक हेल्प। हीलिंग डज नॉट ऑलवेज बिगिन व्हेन द इंसिडेंट हैपेंस, समटाइम्स हीलिंग बिगिन्स इयर्स लेटर, जब आप अपने अंदर के जो सारी की सारी पेन है उसको एक्नॉलेज करते हैं और इमोशनली सेफ फील करते हैं। एंड हीलिंग ऑल्सो डजंट मीन फोर्सिंग योरसेल्फ टू फॉरगेट, इट मीन्स स्लोली लर्निंग दैट व्हाट हैपेंड टू यू शुड नॉट डिफाइन योर एंटायर आइडेंटिटी और फ्यूचर। टॉक टू अ ट्रेन्ड थेरेपिस्ट, ट्रॉमा काउंसलर, या इवन एक ऐसा इंसान जैसे कि हम, इमोशनली सेफ, जो जेन्युइनली आपकी मदद कर सकते हैं, नॉट बिकॉज यू आर ब्रोकन, बट बिकॉज कैरिंग पेन अलोन फॉर इयर्स, इट्स एग्जॉस्टिंग। एंड प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योर ट्रॉमा विद समवन एल्सेस, पेन इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। जो भी आज हमें साइलेंटली सुन रहा है या जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है वो हमें सुन रही हैं, अगर आपको बचपन में आपके साथ कुछ हुआ and you are still struggling emotionally, mentally, relationally because of it, your feelings are valid and support is allowed. Difficult zarur hai ye conversation, lekin pure compassion ke saath mein, we believe you and we are with you. If there's any follow-up letter, please do write to us. Dear Masti, dil se.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए। ऑर्गेनिक, केमिकल फ्री, स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़, रत्नागिरी एंड मोर। नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: you to Shahi Maharani for the special treat.
1: Thank you to Shahi Maharani for making this Mother's Day more special.
2: Thank you, Shahi Maharani, for comforting and mouth-watering flavors.
1: Thank you.
3: Thank you.
2: Thank you.
0: Thank you. We love you.
4: For 25 years, Shahi Maharani has brought royal North Indian flavors to Raffle City. Celebrate with 6 Shahi Signature Wet and Non-Veg dishes for just $25 plus. Served hot on your table. Now on till 30th June with minimum spend of $100 plus per table. 25 years of royal flavors. Only at Shahi Maharani North Indian Restaurant. Book now at shahimaharani.com or call 6235-8840. Terms and conditions apply.
5: Dear Masti, Dil Se. Because sometimes radio par baitha ek anjana insaan aapko duniya se zyada samajh leta hai.
6: Welcome back to Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7 Live. Yes, Ultra is back and ek-ek karke jo hai hum sabhi jo yahan pe RJs hai, chahe wo Nupur ho, chahe wo Renuka ho, we are coming, we are reading your letters, we are and we want you to feel safe in this space which we have created only for you. Jahan par agar aapko bhi kabhi aisa lage ki you have something to say about this, feel free to do so. 9158963 पर. अच्छा, कभी नोटिस किया है कि जब हमें अचानक से चोट लगती है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी जुबान से निकलता है कि ओ मम्मा यार चोट लग गई, इतनी जोर से थोड़ी ना लगी थी. होता है ना, अब ये जरूरी नहीं कि मम्मा ही बोले हम, बट यूजुअली कोई एक नाम होता है, एकदम इंस्टिंक्टिवली हमारे यू नो जहन में सबसे पहले वो नाम आता है. कभी सोचा है क्यों? बिकॉज समवेयर इन आवर ब्रेन वी रिमेंबर इट लाइक अ सेफ्टी नेट. वो एक इंसान जिसके बारे में दिल को लगता है कि ये है तो आई विल बी फाइन, वो पर्सन जो डिस्ट्रेस में, कंफ्यूजन में, प्रॉब्लम में सबसे पहले याद आता है. तो आज जो है हमारा सवाल भी आपसे कुछ ऐसा ही है, बट हु इज योर फर्स्ट गो टू पर्सन. जब लाइफ में कुछ भी होता है, गुड बैड कंफ्यूजिंग स्कैरी हैप्पी, सबसे पहले किसका नाम माइंड में आपके आता है? वो आपकी मॉम हो सकती है, डैड हो सकते हैं, कजन, फ्रेंड, सिबलिंग, कलीग, कोई रिश्तेदार, या कोई ऐसा इंसान जिसको दुनिया शायद नॉर्मल ऐसा ही बोले कि इसके साथ कैसे. बट आपके लिए वो तो एकदम होम वाली फीलिंग लाते हैं. बट हमें ये जानना है कि कौन है वो. विदाउट थिंकिंग द फर्स्ट नेम जो माइंड में आता है, that is your answer. So give it a thought aur hame likh dijiye 9158963 par that who is your go-to person. Aur ha, of course ye hai Dear Masti Dil Se, aapka apna safe space. So please beparwah hoke jo bhi aap hame likh kar bhejenge, jo bhi dil se niklega wo yahi rahega. Aap bas apna jo hai dil kehte hai na, udhel ke daliye. हमारा प्रॉमिस है, वी विल लिसन विद केयर, विद काइंडनेस एंड पूरे दिल से. स्टे ट्यून्ड.

हर जनरेशन में ना एक वो बंदी होती है जो एक दिन स्टैंड लेती है और पूरा गेम ही चेंज करके रख देती है। वो एक रूल तोड़ देती है जो शायद बहुत पहले टूट जाना चाहिए था, और फिर वही एक कदम न जाने कितनी लड़कियों के लिए एक नया रास्ता बना देती है। Why am I talking about this? Let me tell you why. Welcome back to Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7 Live. And अब वक्त है अगली चिट्ठी का। Dear Masti, recently घर में बहुत बड़ा fight हुआ involving my in-laws, me and my husband. मेरे father-in-law ने बहुत loud tone में बात की और मेरी mother-in-law suddenly उनके against खड़ी हो गई। उन्होंने clearly बोला that is not okay. You cannot talk to me like that. मैं शॉक थी, ऑकवर्ड भी थी, बट सडनली आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ हर। लेटर आई वेंट एंड टोल्ड हर दैट कि मैं फख्र है मुझे आप पे। डिड आई डू द राइट थिंग? डियर लिसनर, आई थिंक यू एब्सोल्युटली डिड द राइट थिंग, और मुझे लगता है आपकी मदर इन लॉ ने भी बिल्कुल सही किया। देखिए, हम सब एक ऐसी सोसाइटी में बड़े हुए हैं जहां पे एक लाउड टोन जो है या फिर अथॉरिटी के उसपे, सीनियोरिटी के उसपे हर्टफुल बिहेवियर को कभी कभी काफी नॉर्मलाइज कर दिया जाता है कि अरे गुस्से में बोल दिया, ऐसा तो होता ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हर चीज नॉर्मल नहीं होती सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सालों से होती हुई आ रही है। वी जस्ट कैन नॉट कीप ऑन डूइंग इट। और इसीलिए मैं कह रही थी कि हर जनरेशन में देयर इज दैट वन वुमन, ओके, जो एक दिन शी टेक्स अ स्टैंड एंड सेज दैट बस अब और नहीं। और मुझे लगता है आपकी मदर इन लॉ ने वही किया है। शायद उन्होंने पहले कभी स्टैंड नहीं लिया, रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, शायद किसी को भी नहीं पता हो सिवाय उनके। बट इमेजिन कितना कुछ फील किया होगा उन्होंने, कितना कुछ देखा होगा, टू फाइनली रीच अ पॉइंट वेयर शी रियलाइज दैट इफ आई डोंट स्पीक नाउ देन हू विल, एंड देन ऑफ कोर्स शी डिड। और जो आपने किया वो भी इक्वली ब्यूटीफुल था माय डियर गर्ल। ऑकवर्ड फील करने के बाद भी आप उनके पास गए एंड बोला आई एम प्राउड ऑफ यू। ऑनेस्टली मुझे लगता है उन्हें वो एक्नॉलेजमेंट बहुत अच्छा लगा होगा, स्पेशली कमिंग फ्रॉम यू इन सच अ टेंस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। वुमेन सपोर्टिंग वुमेन स्पेशली इन द सेम फैमिली, दैट इज सच अ पावरफुल थिंग। क्योंकि हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि जैसे शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती, दो फैमिलीज के बीच में होती है, राइट? तो फिर रिस्पेक्ट, सपोर्ट और इमोशनल सेफ्टी भी पूरी फैमिली में फील होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस, एंड ऑनेस्टली आई फील प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। वीडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से। स्टे ट्यून्ड।

आप सभी का स्वागत है डियर मस्ती दिल से पर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। यस, रेडियो के हम आपके वो वाले दोस्त हैं जो आपकी यहाँ पर चिट्ठियाँ पढ़ते हैं और अपना पर्सपेक्टिव उन चिट्ठियों के ऊपर जो हम सोचते हैं पूरे ट्रांसपेरेंसी और पूरे सिंसियरिटी के साथ जो है आपको बताते हैं। वेल, मैं हूँ अंतरा आपके साथ एंड शायद ये सारी बातें जो भी हम यहाँ पर करते हैं सिचुएशंस की, बाहर से छोटी लगे ना लगे अंदर ही अंदर हमें काफ़ी अफेक्ट कर रही होती हैं। ऑनेस्टली आज के लेटर को जो है सुन के मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो सीक्रेटली ही सही बट बहुत सारे लोग ऐसा फील करते होंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले लेटर जो है उसको पढ़ लेते हैं। डियर मस्ती, मेरे ऑफिस में एक कलीग है और मुझे हमेशा लगता है दैट शी कॉपीज एवरीथिंग आई डू। अगर मैं कोई स्पेसिफिक स्टाइल पहनूं, कुछ दिन बाद वो भी वैसे ही ड्रेस करने लगती है। मैं कोई एक्सेसरी लूं तो वो भी, मैं किसी नए कलीग से बॉन्ड करूं तो वो भी उसके साथ चिपकने लगती है। ऑनेस्टली इट इज गेटिंग इरिटेटिंग नाउ। कभी कभी मन करता है उसे बिठा कर बात करूं बट इट फील्स ऑकवर्ड। व्हाट डू आई इवन से टू हर। So my dear listener, सबसे पहले तो let me tell you कि शायद आप overthink नहीं कर रहे हो और ये situation actually बहुत common है। कभी कभी life में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो consciously या unconsciously हमसे ना inspired होने लगते हैं और कई बार copying के पीछे jealousy नहीं होता है, admiration भी होता है बट जब वो काफ़ी repeatedly होने लगे तो irritation feel होना भी natural है क्योंकि somewhere you feel कि your individuality जो है उसको वो invade हो रही है। अब देखिए इस situation में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, डोंट लेट इट कंज्यूम योर मेंटल पीस एंड सेकंड, रिएक्शन केयरफुली चूज करना। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जो है जाकर बोल दें व्हाई आर यू कॉपिंग मी तो चांसेस है सामने वाला डिफेंसिव हो जाए या सिचुएशन ऑकवर्ड या वियर्ड बन जाए ऑफिस में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कभी कभी लाइफ में बेस्ट रिस्पॉन्स होता है टू बिकम इवन मोर योर सेल्फ क्योंकि पीपल कैन कॉपी योर क्लोथ्स, आपका स्टाइल, आपकी एक्सेसरीज बट दे कैन नेवर फुल्ली कॉपी योर एनर्जी। एंड सच कहूँ जो लोग खुद को जेन्युइनली जानते हैं वो कंपैरिजन और कॉपिंग में अटकते ही नहीं है, वो नेचुरली अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, अगर कभी आपको जेन्युइनली लगे कि दिस इज क्रॉसिंग योर पर्सनल कंफर्ट लाइन देन मे बी कामली कैजुअली बात कर सकते हैं, नॉट लाइक काइंड ऑफ अक्यूजिंग दैट पर्सन बस लाइटली। बट टिल देन डोंट श्रिंक योर सेल्फ, डोंट स्टॉप शाइनिंग एंड डेफिनेटली अपनी पर्सनैलिटी को तो डल बिल्कुल भी मत करिए सिर्फ इसलिए क्योंकि someone else is following the vibe. Take it as you clearly have a good taste, right? Hope this helps. जलवा आपका है एंड इट इज प्योरली योर्स, ये हमेशा याद रखिएगा। Stay tuned to Dear Masti, दिल से।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
5: हाँ जी जी,
4: आधा kg मसूर दाल,
5: जी जी,
4: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
5: जी जी।
4: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
5: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
4: क्या
5: जी जी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर, जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
4: वाजी क्या बात जी,
5: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट योर पर्सनल ग्रोसर।
6: जोश में रहो।
1: पता है आपको, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अकेले वीडियोस नहीं बनाते, ना ना ना ना ना, अपने पूरे परिवार के साथ वीडियोस बना रहे होते हैं। मतलब इतने आउटस्पोकन घर वाले मिलते कहाँ हैं, हमारे वाले तो मुंह पर मना कर देते हैं, सुनो ये सब वीडियो शीडियो में हम नहीं आते, ना ना ना ना। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो बिल्कुल डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। सो रिश्ते जो हैं जैसे हमें वीडियोस में दिखाई देते हैं उतने खूबसूरत नहीं होते, या फिर वीडियोस में जितने बुरे दिखाए जाते हैं उतने बुरे भी नहीं होते यार। एनीवेज इन वीडियोस की वजह से हम जरूर बहकते जा रहे हैं और हम परफेक्शन ढूंढने निकल गए हैं। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, और मेरे हाथों में जो खत है उसमें रिश्तों से जुड़ा हुआ कौन सा अगला सवाल है, चलिए पढ़ते हैं। जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है उन्होंने लिखा है कि मुझे मेरे खुद के घर वाले तब याद करते हैं जब उन्हें कोई काम होता है, वरना मेरी फीलिंग्स की, मेरी चॉइसेस की, मेरी प्रॉब्लम्स की किसी को कोई फिक्र नहीं। मैं इमोशनली बहुत ही अकेला फील करता हूँ। मतलब मेरे घर वाले ही सिर्फ ऐसे हैं या औरों के भी होते हैं? जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि किसने बोला कि ऐसे घर वाले नहीं होते हैं? आपको पता है आज भी मैं अपने घर के बड़ों के सामने

ये नहीं बता सकती कि मुझे क्या पसंद है खाने में और क्या नहीं। वो जो लेकर आए हैं ना बाहर से खरीद कर, बस वही मेरी पहली चॉइस हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक रिस्पेक्ट करने का तरीका होता है, हाँ, एंड ये तरीका बहुत ही पुराना है। अगर आप अपने खुद के कुछ रूल्स बना लेंगे, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपने घर वालों को भी डील करने लगेंगे, तो शायद रिश्ते थोड़े से खराब हो सकते हैं। एंड पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे घर वाले ही होते हैं जो हमारा एक्चुअली में अच्छा चाह रहे होते हैं, ओके? मतलब आपके सुख में, आपके दुख में वो खड़े रहेंगे। बस हाँ, उन्हें बहुत ज्यादा आपसे बातें करने की आदत नहीं है एज अ फ्रेंड, या फिर आपने कभी कोशिश नहीं करी उन्हें अपने मन का हाल बताने की, हाँ? तो जितना आप वक्त बाहर दोस्तों के साथ गुजारते हैं ये सोचकर कि लेट्स एक्सप्लोर समथिंग, हाँ, उससे आधा वक्त अगर आप अपने घर पे घर वालों के बीच बैठकर डाइनिंग टेबल पर टेलीविजन के सामने या बालकनीज में बैठकर स्पेंड करोगे तो शायद ये बॉन्ड और भी खूबसूरत बन सकता है। ट्राई दैट वंस एंड लेट मी नो यार। लाल कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं डियर मस्ती दिल से शो पर।

एक बार पता है क्या हुआ, मैंने किसी को बहुत इम्पोर्टेंट वजह से कॉल किया, मतलब बहुत से भी ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट वजह से, और उसकी कॉल वेटिंग पे जाती रही। मतलब उसको कहीं ना कहीं स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मेरी कॉल आ रही है, मेरी कॉल आ रही है, बार बार आ रही है। फिर मैंने कॉल करना बंद कर दिया। अब मैं सामने वाले के रिवर्ट बैक का इंतजार करती रही। एक घंटा निकल गया, दो घंटा निकल गया, तीन घंटा निकल गया। फिर मैंने दोबारा कॉल बैक किया और मैंने सबसे पहला सवाल ये किया कि जब तुम्हारे सेलफोन पे कॉल वेटिंग का नोटिफिकेशन आ गया था, तुमने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया? मुझे बहुत जरूरी काम था, मैं फालतू कॉल नहीं कर रही थी। तो सामने वाले ने बड़े अजीब अजीब से बहाने बनाए कि नहीं नहीं, मेरे स्क्रीन पे तो कुछ दिखता ही नहीं है और कॉल वेटिंग जैसी चीजों पे मैं ध्यान नहीं देता या देती, समथिंग लाइक दैट। और ये सब छोड़ो ना, तुम बताओ क्या काम था जिसके लिए तुम बार बार कॉल कर रही थी, चलो जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे ही ये दो लाइन्स मेरे सामने आई ना, वो दिन है और आज का दिन है, मैंने आज तक उसे कॉल नहीं किया। क्यों? क्योंकि समटाइम्स लोगों के बहुत बड़े एक्शंस नहीं, छोटे छोटे एक्शंस ही बता देते हैं कि उनकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसीलिए आप जिनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मन से मानते हैं, उनकी कॉल्स, उनके मैसेजेस को इग्नोर मत कीजिए, स्पेशली जब आपसे वो बहुत दूर रहते हैं। बस कॉल उठाओ, 5 सेकंड में बोल दो कि रात में कॉल करता हूँ, कल कॉल करता हूँ, मैसेज में बात कर लो, थोड़ा बिजी हूँ। सिर्फ इतना भी बोल दोगे ना, तो आपको शायद आगे जाकर रिग्रेट फील नहीं होगा कि कोई हमसे हर्ट हो सकता है, हमारे एक्शन से हर्ट हो सकता है। चलिए, ऐसी छोटी छोटी बातें अपनी लाइफ में ऑप्ट कीजिए और प्लीज कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी को हर्ट

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Dear Masti, दिल से, because sometimes radio पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। तो आइए, आज का ये हमारा जो शो है काफी पावरफुल सा शो है, फ्रेंकली काफी दिल को टच कर जाता है, दिमाग को टोटली एग्जॉस्ट कर जाता है। बट एक खुशी ज़रूर होती है कि इस शो के ज़रिए आप सभी की चिट्ठियाँ जो हम तक आती हैं या आपकी फीलिंग्स हमारे साथ एक्सप्रेस होती हैं, वो सभी के बारे में हम बात कर पाते हैं और शायद आपको एक डायरेक्शन भी दे पाते हैं। नो फिल्टर्स, नो जजमेंट, जस्ट योर लेटर्स। डियर मस्ती, दिल से। You know, every time we do Dear Masti Dil Se, I realize something very, very powerful. Behind every smiling face, every busy routine, every I am fine, there is often a story nobody knows about. पिछले कुछ एपिसोड्स में आपकी चिट्ठियाँ, जी हाँ, उनमें हमने बात करी है फैमिली की टेंशन्स की, लोनलीनेस की, फाइनेंशियल स्ट्रेस की, ऑफिस पॉलिटिक्स की, रिलेशनशिप के कन्फ्यूजन की, इमोशनल एग्जॉशन की, और आज तो हमने चाइल्डहुड ट्रॉमा की भी बात करी। Silently carrying it on for years. And honestly, sometimes इन चिट्ठियों को पढ़ते टाइम, messages को पढ़ते टाइम हम भी pause करते हैं because we realize how much people are quietly holding inside. But maybe that is exactly कि ये show क्यों matter करता है, because sometimes people are not looking for perfect answers. They just want to feel heard without judgment. They just want someone to say your feelings matter too. And that is what Dear Masti Se is, Dil Se is becoming. A safe little space on Radio Masti 24/7, jahan real people talk about real emotions and real struggles. So if there is something on your mind, something you've never spoken about, a relationship issue, family pressure, mental health struggle hai, heartbreak, confusion, guilt, loneliness, ya simply a life situation where you don't know what to do next, hame likhiye. info@radiomasti.com.sg, listener@radiomasti.com.sg या फिर 9151896 3। आपको टोटली अनोनिमस रखा जाएगा, नो जजमेंट, नो फिल्टर्स, जस्ट ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस फ्रॉम द हार्ट। क्योंकि कभी कभी आपकी कहानी मे नॉट ओनली हेल्प यू, इट मे हेल्प समवन एल्स लिसनिंग साइलेंटली एंड फीलिंग अलोन। सेंड योर लेटर्स, वॉइस नोट्स या फिर ऑफ कोर्स व्हाट्सएप रेडियो मस्ती 24/7 को, एंड मे बी टुगेदर वी कैन ट्राई एंड फाइंड अ लिटिल क्लैरिटी, कंफर्ट एंड कनेक्शन। व्हाट से, ये है डियर मस्ती दिल से, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 पर, जहां हर इमोशन हैज अ प्लेस एंड एवरी स्टोरी मैटर्स। जी हाँ, रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान कई बार आपको बेहतर समझ लेता है औरों से जो आपके आसपास होते हैं। डोंट यू फील दैट। चलिए, इसी के साथ आई एम गोइंग टू लीव यू विद द सॉन्ग एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू से गुडबाय ऑन अ ब्यूटीफुल ट्यूसडे इवनिंग। दिस इज रेणुका विद यू साइनिंग ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ माय फेलो जॉक्स। डियर मस्ती दिल से।

दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो सिद्धा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो सिद्धा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो तुम, एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए निगाह, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल

0: शैतान, चलो घर चले।
1: चलो।
2: रात अकेली है,
3: रात अकेली है तो क्या, हम तो

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: सुबह सुबह ऐसा गाना चला देते हैं कि मतलब कमरे में तो छोड़ो, मैं तो नहाते टाइम भी इसी गाने पे नाच सकती हूँ। ऑन रेडियो मस्ती 24/7 आइए बनवाड़ी।
1: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: ताकि अब नाचते नाचते जो है स्टूडियो में एंट्री करे और मई को बाय बाय कहे कि मई आई से बाय बाय टू यू।
0: यही गंदा वाला जोक जो हम पता नहीं कितने सालों से मार रहे हैं मई के महीने में। इतना बता सकती हूँ कि व्हेनेवर मई कम्स इन आवर लाइव्स वी से मई यू लीव नाउ। तो अब मई का महीना जा रहा है और हम और आप के साथ में हम जून की तरफ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि अगर तुम किसी के, और ये मैंने पहले भी कहा होगा कभी, कि किसी का के हाथ से पानी छीन लो तुम और बोलो नहीं नहीं नहीं नहीं तेरे हाथ में पानी है, पहले मैं पीऊंगा, हैं, और तो वो कहते हैं कि तुमको पता नहीं गधे की जून लगेगी। मुझे आज तक इस बात का समझ नहीं आया इसका क्या मतलब है। मैंने कहा जुलाई क्यों नहीं लग सकता गधे का, वाई जून? लेकिन वेल It's so random, right? Indians, you know, we Indians can go on and on with anything random. तुझे गधे की जून लगेगी, it doesn't even sound great. What do you say?
3: I thought that like I started with a very bad joke and then Renuka said no. Every time I will top it off. I will really top it off.
0: नहीं, मैं अभी सर्च कर रही हूँ कि गधे की जून की मीनिंग क्या है।
3: जून क्या होती है गधे की जून?
0: इट मीन्स द लाउस ऑफ अ डोंकी। इट इज अ हिंदी फ्रेज। फिगरेटिवली इट रिफर्स टू अ वेरी थिक स्किन्ड, ऑब्लिवियस और शेमलेसली स्टबर्न पर्सन हु इज अनअफेक्टेड बाय क्रिटिसिज्म, स्कोल्डिंग और डिस्कम्फर्ट। मतलब ढीठ, बेसिकली
3: जैसे आप बोल रहे थे वैसे वैसे चेहरे नहीं सामने आते जा रहे थे, लाइक साइमल्टेनियसली इट वाज हैपनिंग। नहीं
0: आ गए हैं बिल्कुल हम यहाँ पर और ग्लासी खड़का के ही रहेंगे। रेडियो मस्ती 24/7 पर वेलकमिंग द वीकेंड विद मस्ती मैडनेस इज रेणुका एंड कौन हो तुम?
3: कूल
4: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text.

0: आम ले लो, ताजा मीठा आम ले लो, GGMartOnline.com से आम ले लो।
1: जब घर की याद आए GGMartOnline.com से अल्फांसो आम मंगाए, ऑर्गेनिक केमिकल फ्री स्ट्रेट फ्रॉम देवगढ़ रत्नागिरी एंड मोर, नाउ एट GGMart। ऑर्डर नाउ एट GGMartOnline.com और कॉल 8085657।

0: listen to Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: ख्यालों में हेलो गुड मॉर्निंग
2: और हमारा ये क्रेजी शो दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7
3: भैया ख्यालों में नहीं असलियत में हो रहा है ये वाला शो यहाँ पर रेडियो मस्ती 24/7 पर आप हैं अंतारा और विनुखा के साथ कौन सा ख्याल किसका ख्याल कभी कभी मुझे ख्याल आता है
1: ख्यालों में हम लोग कितना सब कुछ सोच लेते हैं ठीक है एंड आई अक्सर टॉक अबाउट जोनिंग इन एंड जोनिंग आउट जिसमें हम लोगों ने पीएचडी हासिल कर रखी है बड़ा वो होता है बट देन रियलिस्टिकली उसको अप्लाई कर देना 52 ईयर ओल्ड की ये जो है क्रूज पैसेंजर उसको शौक है क्रूजेस पे जाने का ठीक है बट अभी हाल ही में वो हो गई है बैन क्योंकि उन्होंने हर क्रूज में जाकर अपने ख्यालों की दुनिया और अपने ख्यालों की फैमिली को भी जाके मतलब खुद जाती थी अपनी ख्यालों वाली फैमिली को भी साथ में लेकर जाती थी तो क्या हुआ कि इस क्रूज में जो पूल डेक होता है तो पूरा का पूरा पूल डेक पर जितने भी वो सनबेदिंग वाले चेयर्स नहीं पड़े होते हैं तो वो वहां पे 14 लाइफ साइज कार्डबोर्ड कटआउट्स वो एक एक चेयर पे उसने बिठा दिए हैं ठीक है एंड वो सारे मतलब दे आर फेक टूरिस्ट किसी ने सन हैट पहन रखी है एक बंदे ने मार्गरिटा दो एल्डरली पेरेंट्स हैं एंड एक एक कार्डबोर्ड टॉडलर है वेयरिंग क्रॉक्स एंड एवरीथिंग तो भाई वो कहती है तो जब बाद में 3 घंटे बाद जब लोगों ने जाके कंप्लेन की और वहां पे डेक वाले आए शिप वाले कहते ये लोग ऐसे नहीं हुए तो क्या हुआ थे ऑल आर इमोशनली प्रेजेंट ओवर हियर
3: इमोशनली यही तो बात है emotionally. यही तो बात है दिल को बहलाने के लिए गालिब आंटी जी भी उठ के डांस करेंगी वो भी ख्यालों में ऑन रेडियो मस्ती 24/7 अंतरा तुम्हारे ख्याल में क्या है इस टाइम पर बताओ मुझे ऑफ माइक
1: कार्डबोर्ड में तो नहीं है
3: पक्का

0: hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: कर्म के आगे हम किसी भी चीज को आने नहीं देंगे. हमारा कर्म ही हमारा भगवान है, हमारा कर्तव्य है. और अंतरा की आंखें बड़ी होती जा रही है इससे पहले कि बाहर आ जाएं अपने आई सॉकेट से. आई थिंक आई शुड टेल कौन सी खबर की बात हो रही है. गुड मॉर्निंग.
3: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है. मैं कह रही हूँ जब से रेणुका ने जो है ना वो हिंदी में इन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, इनके जो जो आ रहे हैं मतलब इनकी जुबान से ऐसे ऐसे हिंदी हिंदी के शब्द ऐसे उचक उचक के बाहर आ रहे हैं.
2: देखो तुम बिल्कुल मेरा मजाक नहीं उड़ा सकती. पता है क्या होता है,
3: मैंने मजाक उड़ाया क्या? मैंने तो ऑनियर भी आपकी कितनी तारीफ की.
2: जी जी. और पता है क्या, घर की मुर्गी दाल बराबर. एंड आई विल टेल यू why I'm saying that. लेकिन पहले मैं ये खबर देना चाहती हूँ कर्म के बारे में, ठीक है, जो कि मैंने अभी भी कहा. चेन यिंग से कुछ सीखो, चेन यिंग से, ठीक है. वो एक लोकल न्यूज एंकर है चाइना में, ऐसी शक्ल मत बनाओ, बस सीखो उससे. तो क्या हुआ था 2013 में, ठीक है, वहां पर एक 7.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था उसके होम टाउन ऑफ यान में, ठीक है, चाइना में. अब जो चेन है उस टाइम क्या कर रही थी, वो अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी. ओके, शी वॉज प्रोसीडिंग विद द शादी. अब मैं फेरे तो नहीं कहूंगी बट हाँ, चाइना की शादी. और उसने पता है क्या किया, उसने ब्राइड के कपड़े पहने हुए थे, उसने माइक उठाया और वो सीधा डिजास्टर जोन पर पहुंच गई. वहां पर उसने इंटरव्यूज लिए सर्वाइवर्स के, रिपोर्ट किया लाइव फ्रॉम द सीन. जब उसने वो ब्यूटिफुल सी व्हाइट वेडिंग ड्रेस विद द वेल पहनी हुई थी, वेल को किया पीछे एंड उसके बाद मतलब सोचो इंटरनेशनली हर जगह उसकी जर्नलिस्टिक ट्रेडिशन की कसमें खाई जाती है, कसमें.
3: नाइस, इसका मतलब चैन की वजह से सबने चैन की सांस ली.
2: ओह क्या बात है, गंदे से गंदे ख्याल सुबह सुबह सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती पर मस्ती मैडनेस पर आ सकते हैं. चैन की वजह से चैन, क्या बात है, क्या बात. उफ, मैं तो कायल हूँ, कायल.

0: गुड मॉर्निंग है जी, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग है। रात भर आप जो भी करेंगे करेंगे, फिलहाल तो दिन की बात कर लें क्या। यहाँ पर मस्ती मैडनेस,
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: आई थिंक ये सिर्फ ये फ्राइडे वाला शो है जहाँ पे हम ऐसे रैंडमली, मतलब अभी रात की बात करने को कोई सेंस बनता नहीं, लेकिन हम कुछ भी कह सकते हैं।
0: हेलो, अभी मैं रेफरेंस दे रही थी टू रात भर, जो गाना अभी खत्म हुआ है, मतलब ऐसे मत करो
2: जी
0: यार।
2: जी
0: हाँ
2: जी जी। अरे चलो, जैसे इसका कोई सेंस नहीं बना उतना ज्यादा, लेकिन इस बंदी के भी कहने का कोई सेंस नहीं बन रहा है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये जो है, अब कुछ कुछ क्या होता है ना, लोग बस बोलते हैं और उनके बोलने का स्टाइल ऐसा होता है कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कह रहे हैं, एंड इट मैटर्स। ओके, कम्युनिकेशन के क्लासेस में ये लेसन में सिखाया जाता है कि हाउ यू से समथिंग एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये जो है, ये वर्जन है, ठीक है, एंड शी सेज दैट आई एम प्राउड टू बी अ वर्जन, एंड शी सेज दैट आई विल रिमेन अ वर्जन टिल आई डाई।
0: ओह अच्छा, दैट टाइप।
2: हाँ, बिकॉज़ नाउ द बिकॉज़ कम्स, बिकॉज़ आई वांट टू बी अ गुड एग्जांपल टू माय चिल्ड्रन।
0: है एक मिनट, गुड एग्जांपल टू हर चिल्ड्रन बाय रिमेनिंग अ वर्जन। वाकई ये गाना तो आ जाता ना, मैं पागल हो जाती हूँ। जाट के दिल के भीतर क्यों तू आग लगा मेरे, आई लव इट। तो क्या इसका क्या है, इसके पीछे साइंटिफिक नॉलेज क्या है?
2: अच्छा, वही है ना कि मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसने बोल दिया ये मानते हुए कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब इसको कौन बताएगा कि साइंस तो ऐसे काम करता नहीं है।
0: बट बेबी, that means logically she can still go surrogate or she can still have a test tube baby or whatever, right? Matlab she can still be a virgin, it's possible
2: to hai. Point to be noted, my lord, lekin mujhe lagta nahi hai she is going after that.
0: Aur uske bachche sunne wale bhi nahi hai, they don't know what she's missing. She doesn't know that for sure.
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: अच्छा सुनो जरा, ग्रोसरी ना खत्म हो रही है तो 1 kg आटा,
1: हाँ जी जी,
0: आधा kg मसूर दाल,
1: जी जी,
0: काजू किशमिश, ओ हाँ अरे वो नमकीन भी खत्म हो रहे हैं,
1: जी जी।
0: आर यू इवन लिसनिंग या ऐसे ही जी जी किए जा रहे हो?
1: अरे डार्लिंग व्हाई टू फियर व्हेन जी जी मार्ट इज देयर।
0: क्या जी?
1: जी जी, जी जी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर। जस्ट लॉग ऑन टू ggmartonline.com, ग्रोसरी ऐड टू कार्ट करो, चेकआउट करो और ग्रोसरी एट योर डोरस्टेप।
0: वाह जी, क्या बात जी।
1: ऑर्डर टुडे फ्रॉम जीजी मार्ट, योर पर्सनल ग्रोसर।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
1: भाई मुझे तो ऐसा लगा कि इससे पहले कि जो 8 बजे काम शुरू करते हैं ना लोग, वो दफ्तर पहुंच जाएं और सीरियस हो जाएं, मतलब ये वाली खबर मैं जरूर सुना दूं, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। आप भी ध्यान से सुने अंतरा जी।
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो, दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो।
3: बिल्कुल ध्यान से सुनती हुई मैं और बाकी सब भी, मतलब ये एक ऐसा शो है आई थिंक सब ध्यान से सुनते हैं, मिस नहीं होना चाहिए कोई भी एक भी सेकेंड।
1: Well, उत्तर प्रदेश लेके जाएंगे, कानपुर नहीं जाएंगे इस टाइम पर, ये इमोशनल हो जाती है, तो मैं बस उत्तर प्रदेश तक जाऊंगी और वहां पर एक 24 साल की औरत जिसका नाम है रीना। ओके अब रीना अपने शादीशुदा जिंदगी से काफी दुखी थी, ठीक है, अरेंज मैरिज थी, ऑर्गेनाइज करी उसकी फैमिली ने, तो अब उसको लग रहा था यार कैसे भागूं, कैसे जाऊं, और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, हर लवर फ्रॉम द सेम विलेज, राइट। अब बात ये हुई कि रीना जी का जो दिमाग है बड़ा क्रिएटिव था, शी शुड हैव बीन इन अ क्रिएटिव फील्ड। सो रात को वो सोई, ठीक है, और फिर सुबह उठी नहीं, तो लोगों ने देखा कि क्या है ये, क्या है, क्यों नहीं उठ रही है, ठीक है, घर वालों ने देखा, कंबल हटाया तो अंदर स्नेक स्किन 5 फुट का, ओके, मतलब है? और साथ में उसके कुछ सामान, तो बेसिकली टू शो कि वो रात को सांप बन गई, वो इच्छाधारी नागिन थी, वो सांप बन गई ताकि वो लोग ढूंढे भी नहीं उसको, ठीक है। अब असलियत में पुलिस आई, उसने कहा कोई इच्छाधारी नागिन नहीं होती, बकवास करो साइड पे, ठीक है, नाउ लेट्स टॉक बिजनेस। उन्होंने उसका फोन वोन ट्रैक किया, पता लगा कि वो एक्चुअली भाग गई थी विद हर लवर। ओके अब पहले तो गाँव के लोगों के बड़े दिमाग में गए, ओए उसकी लड़की तो इच्छाधारी नागिन थी, यू नो हाउ इट गेट्स, राइट। एंड देन उसके बाद में आंखें खुली उनकी, तो पता लगा कि ये तो बहु कुछ और ही मूड में थी।
3: तो वो लोग उसके बाद में यही कह रहे होंगे ना, वो तो सच में नागिन निकली।
1: हाँ
3: सच में नागिन निकली।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: अच्छा डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
4: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
3: सुना।
4: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

0: आठ बजे के उस पार बिल्कुल पहुंचे हुए हैं हम यानी कि मैं और रेणुका, मैं अंतरा, मस्ती मैडनेस जहां पर चुप रहा है
1: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल
2: खबरों के लिए आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं बेटे। दिस इज मस्ती मैडनेस, फ्राइडे है, वीकेंड का मूड बनता चला जा रहा है।
0: हाँ, सामने छुट्टी देख दिख रही हो ना रेणुका, सबका वीकेंड का मूड बना है। पहले मिड वीक छुट्टी, उसके बाद मंडे छुट्टी, मतलब ऐसे ही ऐसे चल रही है।
2: और बड़े सारे लोग अंतरा दो दिन से बीमार भी चल रहे हैं, थर्सडे फ्राइडे।
0: वही ना, वही मैं कल यही कह रही थी कि मैंने कम फॉर ऑल दोस पीपल जो बीमार और एमसीआर लेके घूम रहे। नहीं, बहुत बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है इस टाइम पे। बट वेल, यहाँ पे जो है इस वाले के बात करते हैं जिसको सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं तो, मतलब सीरियसली। सो हुआ कुछ ऐसा कि इंडिया की ही खबर है, एंड दिस गर्ल शी ऑर्डर्ड एक ये जो डिलीवरी एप्स होता है ना, उसमें से उसने ऑर्डर किया एक वाइब्रेटर। ठीक है, सो देयर इज सर्टेन privacy included when you order these kind of things. Of you're not supposed to, जो भी deliver कर रहा है उसका क्या लेना देना भाई, तू अपना पैकेट दे और चलता बन।
2: Exactly.
0: This guy apparently opened the packet, so he got to know that she has ordered a vibrator. So this guy tells her कि मैडम आप इसको क्यों यूज कर रहे हो, अगर आपको इसको यूज करने की जरूरत है उसकी जगह मुझे यूज कर लो।
2: ओ बेटे की नोटी बन रहा था उसके साथ।
0: हाँ जी,
2: हाँ कि मैडम आप वाइब्रेटर क्यों मंगवा रहे हो, मुझे यूज कर लो। अच्छा, कभी जब खाना मंगवाया तो इन लोगों ने कभी नहीं बोला ना खाना क्यों मंगवा रहे हो, हम बना देते हैं।
0: तो वो थोड़ी ना बोलेंगे,
2: ये भी तो बोले जब सर्विस गोज एन एक्स्ट्रा माइल तो हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करो ना, फिर सिर्फ वाइब्रेटर के सब्स्टिट्यूट क्यों बनना चाहते हो तुम।
0: मतलब कि क्या क्या होगा, मतलब ऐसी कैसे, मतलब क्या ये सोच को लेके कहां तक जाओगे तुम, ये बता दो। और वो भी आज के जमाने में, व्हेन थिंग्स आर रियली चेंजिंग।
2: रियली डिस्गस्टिंग इज द वर्ड। गुड मॉर्निंग
3: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.